मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भागीदार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया

0: स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। तीन दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं रविंद्र दीक्षित की गाई इस मातृवंदना से।

इसी आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी। 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। 6:50 पर होगा आज का चिंतन। 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत सुनिए अल्ताफ हुसैन से हिंदी काव्य पाठ। 7:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 8:30 पर सुनिए धारावाहिक गीत गीता का भाग 16, शीर्षक है देवासुर संसद विभाग योग। 8:40 पर होगा फिल्म संगीत। 9:00 लोकरंग में सुनिए सहदेव सिंह से बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिएगा संगीतकार रविन्द्र जैन के संगीतबद्ध कुछ फिल्मी गीत। 10:00 जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर रसावतरण के अंतर्गत सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं हरिराम गुप्त निरपेक्ष, रेवती कुमार पाठक और हरिप्रकाश कुशवाहा। 10:30 पर सुनिए श्रोताओं के पत्रों व ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से। 1:00 स्वास्थ्य दर्पण। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होंगे। आज शाम 5:00 युवाणी कार्यक्रम में सुनिए सवाल हमारे जवाब आपके। इसके अलावा अदिति अग्रवाल से काव्य पाठ। 5:40 पर होगा फिल्म संगीत। 6:00 प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज सुनिए गोविंद दास कुशवाहा से बुंदेली लोकगीत। 7:20 पर ग्राम सभा में ग्रामीण भाई सुने श्रोताओं के पत्रों फोन कॉल्स और ईमेल पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतूला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र प्रजापति की। डॉक्टर सिद्धार्थ नामदेव से सुनिए वार्ता। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, किसानों के लिए उचित व लाभकारी मूल्य सुरक्षा कवच। इसके अलावा आज की सीख का विषय होगा ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हुए। भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे 8:00 विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति। 8:35 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट। 9:30 पर पब्लिक स्पीक हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। इसके अलावा रात्रि 10:00 सुनिए श्रोताओं के पत्रों व ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती किसानी।
1: पंचो, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं कि अपने बे पशुपालक भैया जिनके छोटे छोटे बछड़ा और बछियां हैं, तो उनके जो सामान्य रोग और उनके उपचार हैं, इसके बारे में अपन ने भी ये देखो हुए कि खासतौर से अपने छोटे छोटे जो बछड़ा बछियां हैं उनका पेट में कीड़ा पड़ जाते हैं। और ये जो कीड़ा होते हैं भैया, ये लंबे या गोल दो ही प्रकार के हो सकते हैं। ये कैसे हो जाते, कभी कहूँ गंदो पानी पे बाबे से या खराब चारो जैसे अपन ने उन्हें डाल दो, बछवा बछीन की आदत हो के अपन ने छोड़ दो तो कोनो भी चारो वारो या कोनो गंदो स्थान जहाँ पड़ो भाव उतर जाके कचूपी भी चाटन लगते हैं, इसे उन्हें जो है पेट में कीड़ा पड़ जाते हैं। और ये जो कीड़ा होते हैं भैया, वे अपने बछड़ा बछीन के गोबर में निकलने लगते हैं और उसे उन्हें अपन देख के गोबर में पहचान भी सकत हो। लक्षण जो होते हैं भैया के, जो बछुआ बछिया अपने होते हैं वे सुस्त सुस्त से बने रहते हैं और उनके पेट में तनाव सोई रहते है भैया गोबर करते हैं, तो ऊ बेरा उन्हें काफी जोर सोई लगाने पड़ते है। तो अगर कहूँ ऐसे लक्षण अपन हम देखें तो अपन इनकी रोकथाम के लाने एक काम करें के फिनोबिस 9 ग्राम एक दवाई आउट है भैया। कितनी भैया? फिनोबिस 9 ग्राम। जा दवाई जो अपने 30 किलो वजन के बछुआ बछिया है 21वें दिन में 3 बार लगातार जो है उनका 3 महीना तक अपन देत रहने हैं। इमें का करने अपन के तूतिया 5 रत्ती 2 छटाक पानी में मिला के खाली पेट पिवा देने हैं। बाद में 1 तोला तारपीन को तेल और 2 छटाक अरसी को तेल अपन मिला के और खाली पेट में अपने बछुआ बच्चीन का पिवा दो तो पेट के कीड़ा मर जाए भैया। एक और बीमारी होते भैया जा होते सफेद दस्त की बीमारी, जा तो अपन ने देखी होगी कि भैया छूत की बीमारी है, तो इमें का होते है कि सफेद बदबूदार दस्त अपने जो है बछुआ बछियन का लगन लगते हैं और जिसे अपना जो है जो पशु है बछुआ बछियां हैं वे जो है कमजोर होके धीरे धीरे करके जब बिलाद दिन तक जो रोग हो बनो रात तो वे मर भी सका। साधारणतः भैया जो देखो गो है कि पैदा होवे के 2-3 दिन बाद ई बीमारी को प्रकोप ज्यादा होते है। ई रोग से अधिकतर जो अपना जो दूषित वातावरण है या कभी कहूँ ठंड लग जाए तो उसे भी जो हो जाते है। और अगर कहूँ अपन ने अपने पड़ेरुन खा बछेरुन खा जो है अपनी कीलन को दूध खीस को दूध कहा भैया जो जो समय पे ना पिवाओ ताजो दूध तो उसे भी भैया जो है जब बीमारी हो जाते है। इसे अपन अपने बछड़ा बछड़ी जो है उन्हें जैसे भी पैदा हुए उनके कछु घंटा बाद अपनी खीस को दूध जानवर से उनका जरूर पे बुआवे। नवजात बच्चन का अच्छी तरह से साफ सुथरे स्थान पे रोशनी वाले हवादार जो स्थान है उते पे राखवे और ई के लाने सल्फा मेजाथीन 5 ग्राम की जो गोली आउट है उखा 3 बराबर खुराकन में अपन खा बांट के अपने जानवर का दे देने हैं। जब ये सवेरे दोपहरी और शाम के देने हैं तो इसे भैया जल्दी लाभ अपन खा मिल जाते है। एक बीमारी और हम अपने बताए अपन पंचन खा निमोनिया की। अपन ने देखो हुए कि जो अपने बछुआ बछिया हैं उनका सांस लेबे में परेशानी जान लगा थे, जब काय होने लगत भैया काय से कि उनके जो फेफड़ा होते ना उधर सूजन आ जाते और उन्हें सांस लेबे में कष्ट होते। ई रोग की रोकथाम अपन का जल्दी करने पर है, काय से कि अगर इमें अपन ने लापरवाही करी तो अपने बछुआ बछिया जो है मर भी सकते है। ई के लाने कभू कहूँ जो रोग जो होते है अचानक मौसम जब बदल जाए या अचानक अपने पशु कहूँ ठंडी में भीग जाए या उखा पसीना आ रहा हो वो अपन ठंडो पानी पिवा देवे तो ई कारण से भी जो रोग हो जाते है। ई के लाने अपन भैया का करने हैं कि जब भी जो देख लें अपन के जो है हमारे पशु का निमोनिया हो गया है तो ऊ के लाने एक काम करें कि उखा एक तो ठंड से बचाए, टाट फट्टा ओढ़ा के पशु के आहार जो है जो अपने पशु है उनके शरीर खा गर्म रखें और रोग की आशंका हो वे पे रोगी पशु खा खुले हवादार स्थान पे और अन्य पशुओं से अलग बांधे। कैसे भैया? निमोनिया एक ऐसी बीमारी है कि जो जो है दूसरे पशु खा भी हो जाते है। पीवे के लाने उको गुनगुनो पानी देवे और खावे के लाने चोकर और हरी दूध देवे। ई के लाने भैया एक दवाई आउट है सल्फा मेजथीन की गोलियां खिलावे पे जो है कछु हद तक सही हो सकत है। और अगर निमोनिया है तो अपन तत्काल अपने नजदीक के जो पशु अस्पताल में पशु डॉक्टर भैया हैं उन्हें दिखा के इसको तत्काल दवाई करवा दें।

अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्रीराम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर रविंद्र साठे का था और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: अहंकार दुख है, अहंकार रोग है, अहंकार पीड़ा है, अहंकार नरक है, अहंकार ठग है जो तुम्हें पल पल ठग रहा है। तुम अपने लिए थोड़े ही ना जीते हो, दूसरे के लिए जीते हो, प्रदर्शन में जीते हो। जो तुम वास्तव में होते हो वो तो प्रकट रूप में किसी को दिखाते नहीं हो, लेकिन जो तुम बिल्कुल नहीं होते हो उसे दिखाने का प्रदर्शन जरूर करते हो। जरा तुम सोचो कि 24 घंटे में कितने चेहरे बदलते हो। आदमी प्याज की तरह हो गया है, एक छिलका निकालो फिर छिलका आ जाता है। इस प्रकार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा छिलका आता जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्याज का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, छिलकों का जोड़ ही प्याज है और चेहरों का जोड़ ही आपका जीवन है। एक चेहरा उतारो तो दूसरा चेहरा प्रकट हो जाता है। तुम पत्नी के सामने कुछ और होते हो और मित्र के सामने कुछ और, बच्चों के सामने कुछ होते हो और ग्राहकों के सामने कुछ और, मालिक के सामने कुछ होते हो और नौकर के सामने कुछ और। इस प्रकार आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे में है, मैं परिवार का संरक्षक हूं, मैं समाज का कर्णधार हूं, मैं पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करता हूं, परिवार और राष्ट्र को चला रहा हूं। ये तो कर्तापन की झूठी मान्यता है, यही मान्यता तुम्हें दुखी बना रही है। उदाहरण के तौर पर, एक गांव में एक आदमी था, उसके पास एक मुर्गा था। वो सारे गांव को डराता था कि देखो मुझसे कभी झगड़ा मत करना, मेरी कभी अवज्ञा मत करना, वरना मैं अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव में चला जाऊंगा और फिर जब मेरा मुर्गा नहीं रहेगा तो वांग कौन देगा, और जब कोई वांग नहीं देगा तो सूरज कहां से उगेगा। गांव के लोग उससे डरते थे, इससे उसका उत्पात ज्यादा बढ़ गया था। एक दिन तो अति हो गई, गांव के लोगों से उसका झगड़ा हो गया और उसकी पिटाई कर दी। उसने कहा अब अंधेरे में रहो, ये चले हम अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव। याद रखना अब इस गांव में कभी सूरज नहीं निकलेगा। और वो आदमी अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चला गया। दूसरे गांव में उसके मुर्गे ने बांध दी, सूरज उगा। उसने हंसते हुए कहा उस गांव के लोग अब अंधेरे में सिर पीट रहे होंगे, रो रहे होंगे अपनी किस्मत पर। अरे सूरज उस गांव में उगता है जहां मेरा मुर्गा वांग देता है। ये मुर्गे के मालिक का अहंकार बोल रहा था। मित्रों तुम भी तो इसी भ्रम में जी रहे हो कि मैं दुनिया का करता हूं, मैं और मेरा की जो वासना है, जो धारणा है, वो तुम्हें दीन बनाने में लगी हुई है। भगवान कहते हैं कि जब तक मैं की अकड़ रहेगी तब तक दुख है। अगर दुख से मुक्ति चाहते हो तो अहं का परित्याग करो, सहज जीवन जीना सीखो। जब तक मैं और मेरा नहीं छूटेगा तब तक मैं नहीं छूट सकता, क्योंकि मेरा ही मैं को अहंकार देता है। सुखी जीवन का राज सिर्फ इतना सा है कि हम अभाव में नहीं सद्भाव में जिए। कर्तापन के बोझ को अपने सिर से उतार फेंके और अहंकार शून्य और सच्चाई पूर्ण जीवन यापन करें। अहंकार जीवन को कठोर बनाता है और कठोरता स्वयं के बिखराव का दूसरा नाम है। अहंकार आदमी आदमी के बीच भेद की रेखा खींचकर उन्हें विभक्त कर देता है।

0: यानी संप्रदाय में बांटने का काम करता है। आज जो दुनिया में धर्म के नाम पर संप्रदायों की बाढ़ सी आई है वो क्या है? सिर्फ आदमी के अहंकार की देन है। यदि आप चाहते हो कि आप शांति से जीवन जियो, लोगों का प्यार आपको मिले, आपका प्यार लोगों को मिले, तो अहंकार को त्याग देना ही आपकी समझदारी होगी और यही जीवन का सार है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 6:55 हो रहे हैं। समाचारों की श्रृंखला अब हम आकाशवाणी के दिल्ली और भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर हिंदी महक और उसके उपरांत फिल्म संगीत के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। रुक करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 52वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेऽस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखर सम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिक संकटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतन प्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांस देशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांस देशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रम मिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30-2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवर नगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इण्डिगो एयरलाइन्स संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानं आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानं अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्।

0: लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य पञ्चदशदिनांके अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26,000-तमवर्षस्य वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां आईसीसी 20x20 विश्वचषक क्रीडायां बर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है।

बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्वकप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। एनटीए ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए और प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 18 जून को इंदौर आएंगी और यहां से वे बैतूल में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां वे शाम को ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर आरती में शामिल होंगी। अगले दिन 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। वे अगले दिन इंदौर से पश्चिम बंगाल के कलाईकुंड जाएंगी। वहीं राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू 20 जून को शाम को जबलपुर आएंगी। अगले दिन 21 जून को वे जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। 22 जून को वे कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश भाग लेंगे। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की 2 दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये वहां की पहली यात्रा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर आज भोपाल में विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य शासन के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के ग्राम बेरखड़ी जेतू में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है।
1: बेरखेड़ी जैतू में ये कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा केंद्र होगा जो देश और दुनिया में हो रहे रिसर्च को तत्काल किसानों तक पहुंचाने का काम करेगा। अलग अलग किसान कैसे उन्नत खेती करें, कम जमीन में भी कैसे लाभकारी खेती की जाए, इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल भी यहाँ तैयार होंगे। बेहतर कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन करके कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है उस पर भी यह काम होगा। यहाँ एग्री क्लिनिक भी स्थापित होगा। AI का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कैसे उन्नत खेती कर सकते हैं इस पर भी यह काम होगा।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर

0: 15 मिनट तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के आलोट तहसील स्थित खमरिया गांव की महिलाएं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बिना मिट्टी के मवेशियों के लिए हरा चारा उगाकर अपनी आमदनी में कई गुना वृद्धि कर रही हैं। और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा।
1: सरकार की योजनाओं और महिलाओं की मेहनत जब एक साथ जुड़ती है तो बदलाव की नई मिसाल सामने आती है। रतलाम जिले के आलोट विकास खंड के ग्राम खमरिया में महिलाओं ने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक अपनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। ग्राम खमरिया स्थित श्री राड़ी माता गौशाला का संचालन कन्हैया स्वयं सहायता समूह की 11 महिलाएं मिलकर कर रही हैं। पहले ये महिलाएं कृषि मजदूरी और सीमित आय पर निर्भर थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद कम पानी और कम लागत में ही 7 से 10 दिनों के भीतर पौष्टिक हरा चारा तैयार होने लगा। स्वयं सहायता समूह की ही महिला मधु बताती हैं कि
2: पहले हम लोग गांव में मजदूरी करके घर चलाते थे, पर आमदनी कम थी। गौशाला में भी चारा नहीं था, पर सरकार की योजना से आजीविका मिशन से जुड़ के नया तकनीकी प्रशिक्षण मिला। अब हम कम पानी में कम खर्चा में हरा चारा बहुत जल्दी बना ले।
1: अब समूह की महिलाएं गोबर खाद निर्माण, जैविक खाद विक्रय और नर्सरी विकास जैसी गतिविधियों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लखपति दीदी बनने की दिशा में बढ़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज पेश है पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों पर एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। पढ़ना सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में सक्रिय ट्रफ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन और सागर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो सकता है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया। भारत ने अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली। वहीं दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने नीदरलैंड पर 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। राजगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला चिकित्सालय झाबुआ में कल रक्तदान शिविर का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। इंदौर में 16 से 18 जून तक जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। नर्मदापुरम में कल विशेष सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीधी में लोक कल्याण मेला के तहत पीएम सुनिधि योजना के अंतर्गत विशेष ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डिंडौरी में कल 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर में कुल 120 आवेदनों का निराकरण किया गया। धार में रबी फसल ऋण को जमा करने के अंतिम दिन आज ऋण को जमा कर किसान 0% ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने की योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिवपुरी जिले में कल महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में कल ग्राम पंचायत पालनगर और नागदा में कृषक संगोष्ठी और खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। मुरैना में कल एक यात्री ट्रेन से कुचलकर

चार लोगों की मृत्यु हो गई। ये लोग आग की अफवाह के चलते दूसरी ट्रेन से उतरकर पटरी पर आ गए थे और कटनी में एक यात्री बस और हाईवा की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 29 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी महक। इसके अंतर्गत लीजिए आप सुनिए अल्ताफ हुसैन से काव्य पाठ।
1: मैं आपके सामने गजल हाजिर कर रहा हूं।

0: है।
1: हिंदी में कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अल्ताफ हुसैन से हिंदी काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म सल्तनत से। आवाज है सुरेश वाडकर की, गीत अनजान का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेरी जुबान, इस फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में, गीत अनजान का और संगीत अनु मलिक का।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आइए अब सुनते हैं पंकज उदास को, फिल्म है अमिया, हम इंतजार करेंगे। गीत है इंदिवर का और संगीत बप्पी लहरी का।

लीजिए, अब सुनिए मोहम्मद अजीज की आवाज में कब्जा फिल्म का गीत, आनंद बख्शी का शब्द रचना है और राजेश रोशन का संगीत।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बज रहे हैं। समाचार प्रभात और उसके उपरांत मॉर्निंग न्यूज अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
6: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
4: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया

0: यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रूपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रूपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
4: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन

0: की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण

0: अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है, वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता, ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। यूएस एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड लिफ्ट यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today.

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है धारावाहिक गीत गीता का भाग 16। शीर्षक है देवासुर संपद विभाग योग।

देवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय में सद्गुण तथा सदाचार आदि देवी संपदा तथा दुर्गुण और दुराचार आदि आसुरी संपदा का वर्णन है। मनुष्य दोनों को पहचाने तथा देवी संपदा धारण करे और आसुरी संपदा का त्याग करे एवं इसमें शास्त्रों को प्रमाण माने।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गीत गीता का भाग 16। शीर्षक था देवासुर संपद विवाह विभाग योग। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म दर्द से लता मंगेशकर की आवाज में, गीत नक्श लाहिलपुरी का और संगीत खयाम का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, फिल्म है महबूब की मेहंदी, गीतानंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए फिल्म महबूब की मेहंदी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। इसमें आज हमारे कलाकार हैं सहदेव सिंह, ढोलक पर इनके साथ हैं ज्ञानीदास कोरी, बेंजो पर अरुण कुमार नामदेव और हारमोनियम पर लहरा है सतीश कुमार पांडे का। आरंभ करते हैं इनकी गाही इस चेतावनी से।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: लीजिए अब सुनिए लोक भजन सहदेव सिंह से।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: आइए अब सुनते हैं जल संरक्षण गीत सहदेव सिंह से।

0: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कहरवा सहदेव सिंह से।
1: आपस में

सहदेव सिंह के गाए इस कहरवा के साथ ही बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त होता है। इनके साथ ढोलक पर थे ज्ञानीदास कोरी, बेंचो पर अरुण कुमार नामदेव और हारमोनियम पर लहरा दे रहे थे सतीश कुमार पांडे। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एक ही संगीतकार। श्रोता, भारतीय सिनेमा और सुगम संगीत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कला से सिर्फ धुनें ही नहीं रची बल्कि एक पूरी पीढ़ी को भावनाओं उसको स्वर दिया। रविंद्र जैन ऐसे ही एक नाम है। जन्म से दृष्टिहीन होते हुए भी जिन्होंने जिस संसार को कभी आंखों से नहीं देखा उसे अपने कानों और हृदय से इतनी गहराई से समझा कि उनकी रचनाएं आज भी श्रोताओं के मन में जीवित हैं। गीत गाता चल, अखियों के झरोखों से, चितचोर और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों के मधुर गीत हों या रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण की भक्ति से भीगी धुने, रविंद्र जैन का संगीत भारतीय घरों की स्मृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में हुआ था। उनके पिता पंडित इंद्रमणि जैन संस्कृत के विद्वान थे। उनकी माता का नाम किरण जैन था। परिवार में संस्कार, धर्म और संगीत का वातावरण था और रविंद्र अपने माता पिता की कई संतानों में से एक थे। जीवन ने उन्हें जन्म से ही एक बड़ी चुनौती दी। वे देख नहीं सकते थे। औपचारिक शिक्षा का रास्ता उनके लिए कठिन था, इसलिए बचपन से ही उनका झुकाव संगीत और भजन कीर्तन की ओर हो गया। छोटी उम्र में ही वे मंदिरों में भजन गाने लगे और वहीं उनके भीतर के कलाकार ने आकार लेना शुरू किया। ये विडंबना ही है कि जिस व्यक्ति ने अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे जैसा गीत रचा और लिखा, वो स्वयं

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: रविंद्र जैन ने संगीत की आरंभिक तालीम जीएल जैन, जनार्दन शर्मा और नाथुराम जैसे गुरुओं से प्राप्त की। शास्त्रीय संगीत की नींव मजबूत करने के साथ साथ उनका रुझान भक्ति संगीत और सुगम संगीत की ओर भी रहा। रविंद्रनाथ टैगोर के संगीत और साहित्य से वे गहरे प्रभावित थे। एक ऐसा प्रभाव जो आगे चलकर उनकी रचनाओं की कोमलता और काव्यात्मकता में झलकता रहा। संगीत की गहरी साधना के लिए वे कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने लंबा समय बिताया। यहां उन्होंने न केवल स्वयं संगीत सीखा बल्कि दूसरों को संगीत सिखाया भी। ये वही दौर था जब उनकी कला परिपक्व हुई और उन्होंने अपनी एक विशिष्ट संगीत शैली विकसित की। एक ऐसी शैली जिसमें भारतीय शास्त्रीय राग, लोकधुने और सरल हृदय स्पर्शी बोल आपस में घुल मिल जाते थे।

रविंद्र जैन के लिए मुंबई का रास्ता आसान नहीं था। संघर्ष के दिनों के बाद उन्हें फिल्मों में अवसर मिलना शुरू हुआ। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने संगीतकार और गीतकार दोनों के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनकी खासियत यह थी कि वे गीत लिखते भी थे और उन्हें स्वरबद्ध भी करते थे, यानी शब्द और स्वर दोनों एक ही कलाकार की कल्पना से जन्म लेते थे, जिससे रचना में एक स्वाभाविक एकता आ जाती थी। उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत फिल्म सौदागर से की, जिसके गीत उन्होंने लिखे और स्वरबद्ध भी किए। राजसी प्रोडक्शंस के साथ उनका जुड़ाव उनके कैरियर का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। चितचोर, गीत गाता चल, तपस्या, दुल्हन वही जो पिया मन भाई और अखियों के झरोखों जैसे जैसी फिल्मों के संगीत ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इन फिल्मों का संगीत सरल था, पर उसमें ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी।

जैन रविन्द्र जैन की कीर्ति का एक अनूठा अध्याय है रामानंद सागर द्वारा निर्देशित धारावाहिक रामायण। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में जब यह धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ तो इसने भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित किया। इसका संगीत रविन्द्र जैन ने रचा और इसी धारावाहिक ने उन्हें देश के करोड़ों घरों में पहचान दिलाई। रामायण की चौपाइयों, दोहों और भजनों ने उनके संगीत को एक आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। भक्ति और भारतीय परंपरा रविन्द्र जैन के संगीत की आत्मा थी। उन्होंने भजन, स्तुतियां और धार्मिक एल्बम भी रचे जिनमें उनकी गहरी आस्था और शास्त्रीय आधार स्पष्ट झलकता है। यही कारण है कि उनका संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है।

रविंद्र जैन को उनकी कला के लिए अनेक सम्मान मिले। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के संगीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया, जो उनके कैरियर की एक बड़ी उपलब्धि थी। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया। ये सम्मान उनके दशकों लंबे योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति थी।

9 अक्टूबर 2015 को मुंबई में 71 वर्ष की आयु में रविंद्र जैन का निधन हो गया। उनके जाने से भारतीय संगीत जगत ने एक ऐसा रचनाकार खोया जिसने अपनी शारीरिक सीमाओं को कभी अपनी कला के आड़े नहीं आने दिया। उनका जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सच्ची दृष्टि आंखों में नहीं, हृदय और कल्पना में बसती है। रविंद्र जैन की विरासत उनके गीतों में सदा जीवित रहेगी। उनकी धुनें आज भी रेडियो, मंदिरों, समारोहों और लोगों की स्मृतियों में गूंजती हैं। एक ऐसा कलाकार जिसने संसार को कभी देखा नहीं, उसने अपने संगीत से करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला भर दिया। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे सुंदर कहानी है। जब तक ये दुनिया रहेगी, रविंद्र जैन के गीत रहेंगे।

एक ही संगीतकार। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रविन्द्र जैन के संगीतबद्ध कुछ गीत। हालांकि इन गीतों को भी, जितने गीत हमने आज प्रस्तुत किए, उनको रविन्द्र जैन ने ही लिखा था। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 10 बज रहे हैं। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। उमस और गर्मी के बीच पूरे रतलाम जिले में मानसून का इंतजार है। किसानों ने खेत तैयार कर लिए हैं और बोवनी के लिए बारिश की राह देख रहे हैं। गर्मी की दोपहरों और धमाचौकड़ी करते बच्चों का शोर स्कूलों में दोबारा जाने के उल्लास में परिवर्तित हो रहा है। वहीं स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और बच्चों के लिए कक्षाएं भी तैयार हो रही हैं। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति हिंदू समाज के लोगों द्वारा आज ही धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ की जाएगी। एक महीने से चल रहे धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, नियम, हवन आदि की पूर्णाहुति भी होगी। समान नागरिक संहिता के संबंध में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की जा रही है कि समान नागरिक संहिता के लिए अपने परामर्श और सुझाव वेबसाइट पर प्रदान करें।

0: मंत्रालय के द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देशभर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल प्रातः 6:15 से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रतलाम से प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नगरपालिका परिसर रतलाम में 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। पूरे जिले में आलोट, जावरा, ताल, बड़ावदा, सैलाना, धामनोद, नामली, पिपलोदा आदि क्षेत्रों में जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं। जन प्रतिनिधियों अधिकारियों द्वारा उनका मौके पर ही निराकरण भी किया जा रहा है। जिले में रतलाम शहर समेत अधिकांश नगरीय निकायों में शिविरों का आयोजन हो चुका है, जबकि कुछ बचे हुए शिविरों का आयोजन 17 जून तक किया जाएगा। शिविर के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों का सिलसिला निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनसेवा और जन कल्याण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। उनका लक्ष्य है कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सीधे उनके घर पहुंचकर उपलब्ध कराया जाए। बीते दिनों कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा सिंह की अध्यक्षता में नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के संशोधन के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित समय सीमा में गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जाएगा। संशोधित कार्यक्रम के तहत फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 18 जुलाई को निर्धारित स्थानों पर किया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूची को त्रुटि रहित, अद्यतन और व्यवस्थित बनाने पर विशेष काम किया जाएगा। बीते दिनों आत्मा योजना के अंतर्गत विकासखंड पिपलोदा की ग्राम पंचायत में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों को प्राकृतिक खेती, ई टोकन प्रणाली एवं नरवाई प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केन्द्र कालूहेड़ा के वैज्ञानिकों ने खेत बचाओ अभियान, मिट्टी परीक्षण और संतुलित उर्वरक उपयोग के संबंध में जानकारी दी। पिछले दिनों जिले के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जिले में 1395 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, आवश्यक उपचार एवं प्रबंधन किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर संध्या बेलसरे ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को 100% गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 616 गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार किया गया। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। पिछले दिनों जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान शिशु के जन्म के 6 माह तक और 6 माह के पश्चात पोषण संबंधी महत्व आदि पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। बीते दिनों जावरा तहसील के ग्राम बीमाखेड़ी में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री की सूचना पर पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग तथा खाद्य औषधि प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। प्रदेश में वर्ष 2028 में होने वाले उज्जैन संघस्थ महामेले के आयोजन की तैयारियां भी चल रही हैं। पिछले दिनों कलेक्टर मीशा सिंह और एसपी अमित कुमार ने जिले की विभिन्न सीमा क्षेत्रों और उज्जैन से आने जाने वाले रास्तों पर संघस्थ के दौरान आने वाले ट्रैफिक के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर बैठकें की। रतलाम जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा का था और वाचक स्वर अभिषेक कटियार का। कृपया हमारे अगले प्रसारण
2: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सबरंग कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं हरिराम गुप्त निरपेक्ष, रेवती कुमार पाठक और हरिप्रकाश कुशवाहा।
3: मां सरस्वती के पावन चरणों को नमन करते हुए मैं इस काव्य गोष्ठी में सबसे पहले मेरे सहयोगी मौधा से पधारे हुए हमारे आदरणीय श्री रेवती कुमार पाठक जी, जो बहुत ही ओज कवि के अच्छे वक्ता हैं, तो मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करता हूँ काव्य गोष्ठी में आदरणीय रेवती कुमार पाठक शेखर जी को। आइए शेखर।
4: हाँ, मुक्तक है। वंदे मातरम से गूंजा मातृभूमि का कण कण है, भारत माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पण है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, हिंद की जयकार से राष्ट्रीयता रग रग बसी, करें प्राण को अर्पण है। देखो अब अवसरवादी अक्सर जग में बढ़ते हैं, तब हितेच्छु मैं तत्पर हूँ हर दम हमसे कहते हैं। आता समय जरूरत का साथ छोड़कर चल देते, ऐसे अवसर में आंसू साथ सर्वदा दे।

देते हैं। तेरे सोच के सांचे में मैं कभी नहीं ढल सकता, कट जाए ये शीश भले शैली नहीं बदल सकता। मिट्टी का पुतला जैसा मुझको समझ रखा है क्या, मिट्टी का पुतला जैसा मुझको समझ रखा है क्या, लोहे का दिल रखता हूँ यूं ही नहीं पिघल सकता। जीवन में संकट आते लेकिन ठहरता कौन है, अगर आती अभी मृत्यु स्वागत डरता कौन है। बैरी सम्मुख हो कितने निपट अकेला खड़ा सदा, युद्ध नतीजा तुम देखो समर में गिरता कौन है। देखो कोई स्वप्न अगर तो उसको साकार करो, नहीं असंभव है कुछ भी उसके लिए प्रयास करो। ले मरहम आएंगे ये फिर लेपेंगे खुशी खुशी, ले मरहम आएंगे ये फिर लेपेंगे खुशी खुशी। पहले लगे हुए मन में घाव प्रदर्शित आप करो। आप दोनों हाथों को पतवार बना सकते हैं, अपने दोनों हाथों को पतवार बना सकते हैं, और हौसले के बल पर नदी पार कर सकते हैं। पुरस्कार व लालच का वितरण तो सत्ता करती, सन्यासी ही लेने से सहज मना कर सकते हैं। रिश्ते जितने दुनिया में हैं खास उनमें मित्रता, अटल भरोसा प्रेम त्याग धागों से गुथी मित्रता। सुचि सत्य सरलता प्रीता नैतिकता और राष्ट्र धर्म, सुचि सत्य सरलता प्रीता नैतिकता और राष्ट्र धर्म। घोले ये रस जीवन में मनुष्य मूल है मित्रता। कर्म भूमि में सभी जनों को करना श्रम होता है, जीवन है तो हर्ष कभी और कभी गम होता है। भाव व्यंजनाएं सुनकर उत्साहित करने खातिर ताली वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। आए शोक की घड़ी तो हंस के सहना पड़ता है, संसार में दिखाने को सच के रहना पड़ता है। कद भले ही आपका बहुत ऊंचा हो मगर, कद भले ही आपका बहुत ऊंचा हो मगर, सीढ़ियों की चढ़ाइयां झुक के चढ़ना पड़ता है। सबसे कहता हूँ मित्रों अपना सम्मान न भूलो, कैसी भी स्थिति आए देश धर्म का मान न भूलो। घात बहुत अपमान सहे अंग्रेजों से मुगलों से, चाहे मिट जाओ लेकिन मानव कल्याण न भूलो। जब तक इस कपट द्वेष से मुक्ति नहीं हम पाएंगे, जब तक इस कपट द्वेष से मुक्ति नहीं हम पाएंगे, सत्ता सुख के हम रोगी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। गर गिरवी धर्म हुआ शुभ कर्म नहीं कर पाएंगे, तब मिले पराभव सदा हमें, मारे निश्चित जाएंगे, मारे निश्चित जाएंगे। इसके बाद मैं नारी पर जो है कुछ दोहे हैं प्रस्तुत हैं। ईश्वर

0: से पधारे कवि हरि प्रकाश कुशवाहा जी, आपको अपनी कविताएं।
1: अपने हाथों चला रही है मेरी पतवारों को कौशल, अपने हाथों चला रही है मेरी झुकी हुई नम आंखें, तुमको कुछ कुछ

कि अब मैंने उड़ना छोड़ दिया, वक्त की घड़ियां टिक टिक कर दी, ढलता सूरज दिखा रही है। वक्त की घड़ियां टिक टिक करती, ढलता सूरज दिखा रही है। मेरी झुकी हुई नम आंखें तुमको कुछ कुछ सुना रही है, यादों के अनमोल खजाने गीत सुहाने सुना रही है, गीत सुहाने सुना रही है।

0: तुमको कुछ कुछ सुना रही है, यादों के अनमोल खजाने गीत सुहाने सुना रही है, गीत सुहाने सुना रही है। मेरे गुनाहों को मेरी माँ भुलाया करती है, मेरे गुनाहों को मेरी माँ भुलाया करती है। गुस्से में जो होती है तो खुद को रुलाया करती है, गुस्से में जो होती है तो खुद को रुलाया करती है। मेरे गुनाहों को मेरी माँ भुलाया करती है। माँ तो जान जाती है जब भूख मुझे लगती है, माँ तो जान जाती है जब भूख मुझे लगती है। अपने हाथों से निवाले खिलाया करती है, अपने हाथों से निवाले खिलाया करती है। माँ मेरे गुनाहों को भुलाया करती है। गुस्से से लाल आंख पिताजी की देखती ही मुझे, गुस्से से लाल आंख पिताजी की देखती ही मुझे। अपनी बाहों में भर के माँ छिपाया करती है, अपनी बाहों में भर के माँ छिपाया करती है। मेरे गुनाहों को मेरी माँ भुलाया करती है। दर्द सहा करती है ममता महान होती है, दर्द सहा करती है ममता महान होती है। और खूंटा बछड़े मारते हैं गाय चाटा करती है, दर्द सहा करती है ममता महान होती है। खूंटा बछड़े मारते हैं गाय चाटा करती है। माँ मेरे गुनाहों को भुलाया करती है। बहुत ही अच्छी लाइन है आगे की। वृद्धा आश्रम में फेंक देते हैं कूड़े की तरह, वृद्धा आश्रम में फेंक देते हैं कूड़े की तरह। सक्षम होने तक जिन्हें माँ संभाला करती है, सक्षम होने के लिए माँ संभाला करती है। मेरे गुनाहों को मेरी माँ भुलाया करती है। माँ के मुकाबिल ना बड़ा दुनिया में दर्जा है कहीं, माँ के मुकाबिल ना बड़ा दुनिया में दर्जा है कहीं। अपने बच्चों को माँ निस्वार्थ पाला करती है, अपने बच्चों को माँ निस्वार्थ पाला करती है। माँ मेरे गुनाहों को भुलाया करती है। अंतिम पंक्तियां हैं। माँ का कर्ज दुनिया में कोई नहीं उतार सका, माँ का कर्ज दुनिया में कोई नहीं उतार सका। कौशल उरों में ममता रस कुदरत उतारा करती है, कौशल उरों में ममता रस कुदरत उतारा करती है। मेरे गुनाहों को मेरी माँ भुलाया करती है, मेरे गुनाहों को मेरी माँ भुलाया करती है। गुस्से में जो होती है तो खुद को रुलाया करती है। अब हमारे हमीरपुर से ही पधारे वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री हरिराम गुप्त जी निरपेक्ष को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हरिराम जी निरपेक्ष।
1: मैं विकसित राष्ट्र शीर्षक से एक कुंडली और इसके बाद प्रेम पर कविताएं। राष्ट्र प्रगति करता वही हो निशंक जनतंत्र, अनुशासन निर्भीकता भाईचारा मंत्र। भाईचारा मंत्र रमे सद्भाव एकता, और धर्म संस्कृति होए रिवाजें भले भिन्नता। कहता कवि निरपेक्ष यदि राज करे धृत राष्ट्र, अनाचार हिंसा घृणा धूल धूसरित राष्ट्र।
0: बहुत
1: और रसराज प्रेम पर एक कुंडली। भाव वृत्तियां रस सभी सौम्य मृदुल दुलराव, अतुल अमीय सम प्रेम रस है अनंत फैलाव। है अनंत फैलाव शांति सतगति सुखदाई, दुनिया के सब धर्म प्रेम के हैं अनुयायी। कहता कवि निरपेक्ष प्रेम में निहित शक्तियां, और साहित्यिक रसराज गौण सब भाव वृत्तियां। एक दोहा। प्रेम स्वकेंद्रित जिन किया स्वतः ईश उन प्राप्त, और प्रेम विश्व पर आया है एक दूजे में व्याप्त। एक गीत प्रेम पर। प्रेम

0: और एक गीतिका के दो चार छंद। पेशा कविता पढ़ने गीत सुनाने का, पेशा कविता पढ़ने गीत सुनाने का, नाज उन्हें है सुरलय धुन से गाने का, नाज उन्हें है सुरलय धुन से गाने का। आत्ममुग्धता के दर्पण से नजर टिकी, आत्ममुग्धता के दर्पण से नजर टिकी, देख नहीं पाते हैं प्रेम जमाने का। बंद लिफाफा तौला करता स्पर्धा, बंद लिफाफा तौला करता स्पर्धा, द्वेष ईर्ष्या जलन शूल पनपाने का। और सीखे कोई मीरा सूर कबीरा से, सीखे कोई मीरा सूर कबीरा से, कवि तुलसी से कोविद धर्म निभाने का। जीवन व्रत में व्रति सरल रेखा त्रिज्या, जीवन व्रत में व्रति सरल रेखा त्रिज्या, माध्यम यात्रा प्रेम केंद्र तक जाने का। पूर्ण समर्पण आलंबन शिव संबल है, पूर्ण समर्पण आलंबन शिव संबल है, ध्यान लगन निष्ठा मौलिकता पाने का। और मक्ता का शेर है, संसाधन निरपेक्ष बहुत हैं उन्हें चुने, संसाधन निरपेक्ष बहुत हैं उन्हें चुने, कविता तो साधन आनंद लुटाने का, कविता तो साधन आनंद लुटाने का।
1: बहुत बहुत सुंदर हरी राम जी निरपेक्ष, और ये दो लाइन की कविता। डरते डरते ही सही उद्धार कर दिया, डरते डरते ही सही मैं दरिया में उतर गया, सच ये है कि लहरों ने दरिया पार कर दिया। इश्क की जंजीर

0: जंजीरों में जकड़ा हुआ था मैं, इश्क की जंजीरों में जकड़ा हुआ था मैं, उसकी बेवफाई ने आजाद कर दिया। चांद चांदनी की जरूरत नहीं मुझे, चांद चांदनी की जरूरत नहीं मुझे, जुगनू ने रास्ता आबाद कर दिया। सच यह है कि लहरों ने दरिया पार कर दिया। अच्छा भला था बैठा मैं सुकून से घर पर, अच्छा भला था बैठा सुकून से घर पर, मेरा हाल चाल पूछ कर बीमार कर दिया। मेरा हाल चाल पूछ कर बीमार कर दिया। सच ये है कि लहरों ने दरिया पार कर दिया। सोचा था साथ देंगे मेरा ढलते वक्त में, सोचा था साथ देंगे मेरा ढलते वक्त में, मेरा भरोसा तोड़कर बेजार कर दिया। मेरा भरोसा तोड़कर बेजार कर दिया। अगला है, सच्चाइयों की राय पर मैं उम्र भर चलता रहा, सच्चाइयों की राय पर मैं उम्र भर चलता रहा, मेरे वसूलों ने मुझे गुनहगार कर दिया। सच यह है कि लहरों ने दरिया पार कर दिया। सक्की निगाहों से मुझे अब देखते हैं सब, सक्की निगाहों से मुझे अब देखते हैं सब, बदनाम उसने मुझको सरे राह कर दिया, बदनाम उसने मुझको सरे राह कर दिया। सच ये है कि लहरों ने दरिया पार कर दिया। दो गज जमीन मुझको विरासत में मिली है, दो गज जमीन मुझको विरासत में मिली है, कौशल को मौत तूने जमींदार कर दिया, कौशल को मौत तूने जमींदार कर दिया। सच ये है कि लहरों ने दरिया पार कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं गोष्ठी का समापन करता हूँ। और हरी राम जी निरपेक्ष सुमेरपुर से, और रेवती कुमार पाठक जी शेखर सुमेरपुर मौदा से, और हरिप्रकाश कुशवाहा मौदा से पधारे, में सभी का आकाशवाणी छतरपुर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसी के साथ ही हमारी काव्य गोष्ठी समाप्त होती है। धन्यवाद।
1: रसावतरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि थे हरिराम गुप्त निरपेक्ष, रेवती कुमार पाठक और हरिप्रकाश कुशवाहा। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपके पत्रों, ईमेल और इसके अलावा सोशल मीडिया पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। और आज का आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका मित्र समीर गोस्वामी। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म लफंगे से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जो हमारे सोशल मीडिया पर पसंद करने वाले श्रोता हैं वो अभी हम बताते हैं। ग्रामवा पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हॉल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव और संजीव यादव, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, एसके पप्पी, मां बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंत इन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद्र कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु। श्रोताओ, ये जो मैं आपकी फरमाइश पढ़ रहा हूं मेरे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर भी अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं, यहां पर भी आप अपने पसंद भेज सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम का जो पहला गीत हमने कहा है वो फिल्म लफंगे का आपकी पेशी नजर है।

कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म है दिल ने फिर याद किया, जी एल रावल का गीत और सोनिक ओमी का संगीत। और जो फेसबुक पर हमारा पेज है और जिसमें आज आपकी पसंद कार्यक्रम का बैनर लगा हुआ है, उसमें जिन श्रोताओं ने अपनी पसंद भेजी है उसको हम पढ़ रहे हैं। आप अपनी पसंद इस पेज पर भेज सकते हैं, कमेंट वाले सेक्शन में आप अपना नाम और पता लिखें, हम उसको पढ़ेंगे। और ये जो अगली फरमाइश है वो है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से लिखने वाली श्रोता है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। कस्बा उदयती बदायू से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मोहम्मद रफी को, फिल्म है दिल ने फिर याद किया।

आइए अब सुनते हैं तपस्या फिल्म का गीत आरती मुखर्जी और किशोर कुमार की आवाज में, गीत एमजी हशमत का और संगीत रविंद्र जैन का, पसंद आप सभी की। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब रामचबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांशी धाकड़। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अब्बान और अबान अबा अब्बासी। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट से जिला रतला मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। अंभई तहसील सिल्लौड़ छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, विशाल वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके और यज्ञेश घोटके। नटेरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से कल्याण सेन, पुष्पा सेन, नितिन सेन, जतिन सेन। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म तपस्या का ये गीत।

0: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म निकाह से। महेंद्र कपूर की आवाज है, हसन कमाल का गीत, रवि के संगीत और पसंद आप सभी की। नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता वर्मा, रेखा वर्मा और इशिका वर्मा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। तीव्रता डबरीपारा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोदरी बाई मरकाम। जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास और आशा देवी। रानी याग्निक आशीष याग्निक ग्राम खनुआ जिला जालौन से। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत। भाटापारा देवरी से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म निकाह का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: कहां फिर मुलाकात हो, क्योंकि

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को, फिल्म है पगला कहीं का, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का और पसंद आप सभी की। खड्डा खुशीनगर उत्तर प्रदेश से सदानंद यादव और विवेकानंद नीतेश, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाड़े, अर्चना गोंडाड़े, हीरामन शेंडे और प्रणय प्रसिद्धि, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना आप सभी हैं लदावली जिला मुरादाबाद से, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से माधव नामदेव, सीमा नामदेव, डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, गांव अरायन, जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के और हनुमान बोड़के, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतना नाहटा, ग्रामवा पोस्ट गौना कुसमार थाना सौजना तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, रामदेवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखनलाल नामदेव, शाहना नामदेव, आकाश नामदेव, रानी परी नामदेव, सुरभि नामदेव, पायल नामदेव और उनके मम्मी पापा, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा और राहुल शर्मा। आप सभी की पसंद पर प्रस्तुत है फिल्म पगला कहीं का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे आपके पत्रों, ईमेल और सोशल मीडिया पर आए हुए नामों के आधार पर फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं। अगले कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुनें।

0: कहीं चिलचिलाती गर्मी तो कहीं बेसब्री से आसमान की ओर ताकती हुई निगाहें, कहीं खूबसूरत सौंधी खुशबू से लबरेज ठंडी ठंडी बयारें। यही तो है मौसम, यही तो है जिंदगी। चलिए, मौसम को तो ना हम बदल सकते हैं ना आप, बस हम प्रतीक्षा कर सकते हैं कि आपके यहां भी बादलों की ये जमावट बसे, बादलों की ये जमावट बरसे। फिलहाल हम आपकी खूबसूरत बातों और खूबसूरत गीतों के साथ इस माहौल को खुशनुमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, मध्य प्रदेश प्रसारण ना?
0: जी हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं। आपका परिचय हम जानना चाहते हैं।
1: हाँ, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: आज हम आपसे बातें करें उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों पुणे का मौसम कैसा है?
1: यहाँ तो सर बिल्कुल भी बारिश नहीं है।
0: अच्छा,
1: सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे।
0: ओहो,
1: एक बूंद भी पानी भी गिरा है अभी। आज तो 14 तारीख हो गई, फिर भी कोई बारिश का पता नहीं है अभी।
0: लगभग

0: हमारे देश के अनेक हिस्सों में धीरे धीरे मानसून दस्तक दे रहा है। कहीं कहीं प्री मानसून के हालात बने हुए हैं, थोड़ी बहुत बारिश हुई है,
1: हाँ जी,
0: लेकिन पुणे में पानी नहीं पहुंचा है।
1: नहीं
0: जी
1: जरा
0: जी
1: भी नहीं है अभी।
0: हाँ, तो गर्मी भीषण होगी।
1: हाँ जी, गर्मी तो बहुत है, पसीना आते रहता है सर, हमेशा गीली गर्मी पड़ रही है, अभी जून का महीना है। और
0: जी, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द एक दो दिन के भीतर ही आपके यहाँ पर भी उम्मीदों की बरसात हो।
1: हाँ जी,
0: जी, बताइए श्रीपाद जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: हाँ जी, हाँ, हमें सुनना है फिल्म हमारी याद आएगी मैं का गाना सुनना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया हुआ है। पूछता हूँ ये क्या किया मैंने।

0: सर बिल ही लिया ले ले।
1: हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते सर, राधिका बात कर रही हूँ नीमच से।
2: कैसे हैं राधिका जी?
1: पर हम नीमच ही बोलते हैं के गांव में से, बोले आवाज गांव में रहते हैं।
2: अच्छा जी, क्या हाल है इन दिनों नीमच के?
1: सर बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है भयंकर की, पानी का नामो निशान नहीं अभी तक, छीटे छाटे आते हैं, मौसम अंधा लेकिन उमस होती है बहुत।
2: चलिए देर सवेर आपके यहाँ पे भी मानसून पहुंच ही जाएगा, उम्मीद हम ये करते हैं कि जल्द से जल्द पहुंचे, आपको राहत मिले। फिलहाल कोई ऐसा गीत बताइए जिससे मौसम आपके यहाँ का बदल जाए।
1: सर गाने मेरे को ना वो सुनना है, गाने का तो मेरे को मूवी का नाम याद नहीं है और गाने की बीच की लाइन याद है ना।

0: हाँ बताइए।
1: भीगी भीगी रात में दिल का थामन दाम ले, ये गाने की लाइन है सर। मेरे को ना गाने के बोल भी याद नहीं आ रहे, एकदम से फोन लग गया ना मेरा।
0: अच्छा जी,
1: आ जा सनम मधुर चांदनी में हम,
0: अच्छा आ जा सनम मधुर चांदनी में हम।
1: गाने के बोल याद है सर, बस मूवी का नाम नहीं।
0: आपने फोन
1: जी
0: किया राधिका जी, इसके लिए हम आपको देते हैं बहुत
1: थैंक यू।
0: बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: अरे श्रीमान जी को नमस्कारम।
1: नमस्कारम जी।
0: अरे कमाल हो गए सर जी, ये मान के चलिए सदियों गुजर गए तब कहीं जाके फोन लगा है, और अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सर जी श्रीमान जी से भगवान से कि कल फोन लग जाए, नहीं तो समझ लो कि मैं दुबला पड़ जाता हूँ, खाना भी नहीं खाता सर।
1: अच्छा जी।
0: कहते हैं सर जी

0: अजीज होता है न हबीब होता है, दूर होता है न करीब होता है, अमीर होता है न गरीब होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और अच्छा दोस्त जो वक्त में साथ दे दे वही सबसे अच्छा दोस्त होता है श्रीमान जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भी आपके इस वक्त को बहुत हसीन बनाना चाहते हैं, आप अपना तारुफ दीजिए।
0: अरे सर जी, अब तो मैं पता भी बता दूंगा, गाने भी सुन लूंगा, तभी तो मजा आएगा। और चूंकि जब फोन लग जाता है बातें मायने रखती हैं, गाना तो एक बहाना होता है। सर जी मैं पता बता दूं अपना?
1: जी जी,
0: ग्राम कल्पा जिला सतना से हिंदुस्तानी कलाकार चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ सर जी।
1: खान साहब, हमने आपको जान लिया था, लेकिन हमारे बाकी के श्रोताओं के लिए हम आपका परिचय जानना चाहते थे।
0: अरे सर जी, क्यों नहीं जानेंगे, आप हमारे दिल में बसे हैं और हम आपके दिल में बसे हैं, भाभी जान भी तड़प रही है बेचैन।
2: नमस्कार भाई साहब।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।

0: आप अपना तारुफ दीजिए।
1: अरे सर जी, अब तो मैं पता भी बता दूंगा, गाने भी सुन लूंगा, तभी तो मजा आएगा। और चूंकि जब फोन लग जाता है बातें मायने रखती हैं, गाना तो एक बहाना होता है। सर जी मैं पता बता दूं अपना,
0: जी,
1: ग्राम कल्पा जिला सतना से हिंदुस्तानी कलाकार चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ सर जी।
0: खान साहब, हमने आपको जान लिया था, लेकिन हमारे बाकी के श्रोताओं के लिए हम आपका परिचय जानना चाहते थे।
1: अरे सर जी क्यों नहीं जानेंगे, आप हमारे दिल में बसे हैं और हम आपके दिल में बसे हैं, भाभी जान भी तड़प रही है बेचैन।
2: नमस्कार भाई साहब।
0: नमस्कार जी, नमस्कार जी।
2: आप कैसे हैं?
0: हम तो बहुत खैरियत से हैं और चाहते हैं कि आप भी बहुत सुकून से हों।
2: जी भाई साहब।
1: अब ये मान के चलिए सर जी, हम दोनों लोग मिलजुल करके अभी अचार रख रहे थे, मैं आम काट रहा था और ये मसाला गूंज रही थी।
0: बहुत बढ़िया।
1: जी जी श्रीमान जी, दोनों लोग मिलके काम कर लेते हैं और साथ में आपको फोन लगाते रहे, तो फोन तो इन्हीं ने लगाया, मैं तो हार गया आपकी भाभी जान में।
0: तो ये कितने दिनों बाद फोन लगा है ये भी बता दे।
1: अरे सर जी मुझे तो लगता है, अब मैंने गिनती तो नहीं गिना, लेकिन महीनों तो होते होंगे।
0: चलिए, आपकी बेसब्री आपकी आवाज से झलक रही है।
1: हाँ सर जी, और गाना सर जी बता दूं, गंगा की सौगंध का ही सुनवा देना सर जी, क्योंकि गाने हमारे कुछ अलग हटके होते हैं, धुआंधार होते हैं और धांसु होते हैं, जिसमें आप लोगों को नाचने के लिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल को ऑल वर्ल्ड के श्रोताओं को मजबूर कर दे सर जी। हाँ तो गाना वो है सर जी, हम दोनों लोग गुनगुना ले, फिर बता दूंगा, लता और किशोर जी की आवाज में है वो गाना। आंख लड़ी हमसे जो आंख लड़ी रे, तो धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी,
2: लंबू तेरी लाली उतर जाएगी, लंबू तेरी लाली उतर जाएगी। नमस्कार भाई साहब।
0: नमस्कार जी, नमस्कार जी, हम कोशिश करेंगे ये गीत आपको जरूर सुनवाएं।
1: जी सर जी है आपके पास श्रीमान जी, और आप भी नाम बता दें, दिनेश भैया बोल रहे हैं?
0: नहीं नहीं जी, आज इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ, आपका दोस्त शिवम।
1: और एक कमाल हो गए सर जी, आप तो कहते सत्य ही शिव है, शिवम ही सुंदरम है, आप तो बहुत अति सुंदर है, और आपकी आवाज में वो जादू है कि जाना होता है कहीं और, खींचे आपकी ओर चले जाते हैं सर जी, और ना जाने आपने बातों ही बातों में अपना बनाना और ये हुनर आपने सीखा कहाँ से श्रीमान जी?
0: बस जी, ये सब कुछ आपकी इनायत है, हम तो सिर्फ अपने सभी श्रोताओं के लिए कोशिश करते हैं कि उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम बना सकें, पेश कर सकें।
1: सर जी एक रिक्वेस्ट और, अच्छा ये गाना मैं प्रेमदास बाबा जी के साथ में सुनूंगा, उनका नाम ले लूं, बुजुर्ग हैं भैया वो, क्योंकि अगर उनका नाम ले लूं तो थोड़ा उनको खुशी मिलती है, और हमारे बहुत ही बुजुर्ग श्रोता ये कहना चाहता हूँ सजीत जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब आपका गीत हम पेश किए देते हैं, आपने कॉल किया इसके लिए आपको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
1: धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम सर जी।
3: अरे आंख ले।

0: समंदर
1: हाथ समंदर के अंदर से ले जाऊंगा धन्नो ले जाऊंगा। अरे मैं तो तुझको ठेठ जलंधर हाँ हाँ ठेठ जलंधर तो कोर बंदर
0: ना ना।
1: तो गोड़ बंदर
0: तो
1: बोरी बंदर कोर बंदर गोड़ बंदर बोरी बंदर बाड़ी बंदर
0: ना ना ना ना नहीं।
1: ओ तो फिर आजा मेरे दिल के अंदर आजा आजा आजा आजा।
2: हेलो नमस्कार मैम
3: जी। नमस्कार
2: सर। नमस्कार सर। नमस्कार बिल्कुल थैंक यू सर।
3: इंतजार पूरा हुआ
2: इंतजार की घड़ी खत्म हुई सर
3: जी। इंतजार के लिए जैसे आंखें पथराती है वैसे हमारे कान भी पथरा जाते हैं हमारे श्रोताओं की आवाज सुनने के लिए। बताइए किन से हमारी बातें हो रही
2: हैं। मधुर आवाज सच्ची सीधी आवाजों के जादूगर अगर है तो विविध भारती भोपाल के सारी स्टाफ।
3: ये आपका प्यार है मोहब्बत है। किन से हमारी बात हो रही है।
2: मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी मनमोजी बोल रहा हूँ सर।
3: अच्छा जी नियाज भाई।
2: जी जी इंदौर कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से बोल रहा हूँ सर। नियमित श्रोता हूँ आपका दर्पण का और बहुत अच्छा लिखते थे और आप पहले पत्र भी आप बहुत अच्छे पढ़ते थे।
3: मतलब आप बड़े दिलोजान से कार्यक्रम सुनते हैं।
2: हाँ बिल्कुल बढ़िया सुनते हैं। फरमाइशी भी कार्यक्रम आपका अच्छा लगता है सर आपका बिल्कुल बारह से मिल वाला।
3: तो नियाज भाई आज कौन सा गीत आपके लिए पेश किया जाए।
2: आपकी पसंद का गाना सुन रहा हूँ सर। मैं तो अभी आज मैम तो सुनाती है।

0: मुझे वो है ना गाना वो सुनना है अपना कर्ज का,
1: कर्ज फिल्म का।
0: दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने।
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत गीत है रफी साहब का गाया हुआ है।
0: जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है, उसकी कड़ी बहुत प्यारी है लगी, और ये इस गाने में बिल्कुल ऐसी सादगी और जीवन का सच्चा सच्चा प्यार की मोहब्बतों को इजाम देता सर वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने उस गीत की रूह को पकड़ लिया हो ऐसा लगता है। चलिए तो नियाज भाई, बिना देर किए हुए ये गीत आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
0: बिल्कुल शुक्रिया सर, बहुत
1: शुक्रिया, धन्यवाद।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो। हाँ नमस्कार सर जी, मैं ग्राम कन्या दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से परशुराम साहू बोल रहा हूँ सर जी।
0: परशुराम साहू जी
1: जी सर।
0: दमोह से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ सर, ग्राम कन्या दमोह के पास स्थित है सर गांव।
0: अच्छा, आपके गांव की खासियत क्या है, क्या देखने लायक है आपके गांव में?
1: सर हमारे गांव से पास स्थित है सर कान्हा किसली है, बलाचखंड माइन से सर जो एशिया की सबसे बड़ी तांबा की खदान है। हाँ
0: हमने
1: सर
0: देखा है और
1: जी
0: कान्हा
1: सर।
0: किसली भी हम घुमाए हैं।
1: चलो अच्छा है सर।
0: आप भी घूमे हुए हैं?
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल।
0: एक अलग रोमांच होता है जब कुदरत के इतने करीब हम जाते हैं।
1: बिल्कुल सर जी, प्रकृति से निकटता वास्तव में जो जीव जंतु है सर, जंगली जीव जंतु करीब से देखना एक अलग ही खुशी होती है सर। चाहे सर एक चिड़ियाघर का शेर और कान्हा किसली का जो जीव जंतु है उनमें देखने में जमीन और आसमान का अंतर होता है सर,
0: बिल्कुल,
1: ऐसा मैं
0: आपने
1: महसूस किया हूँ सर जी।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो रोमांच है, जो एक दिलचस्पी जागती है, जो एक थोड़ा सा एक डर
1: जी
0: भी
1: सर जी
0: लगता है, एक उत्सुकता भी रहती है।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: उसका एक अलग ही कहना
1: हाँ सर, और कभी कभी सर जो कान्हा किसली जो जीव जंतु है सर हमारे गांव स्थित जंगल के आसपास भी दृश्य देखने को मिलता है सर उनका, जैसे खास तौर में सर गर्मी के दिनों में तेंदुआ अक्सर नजर आता था सर हमारे गांव के जंगल के आसपास।
0: जी, क्योंकि पानी
1: हाँ
0: की
1: सर
0: तलाश में ये जानवर जो हैं, क्योंकि वहाँ कोई परिधि तो बनी नहीं है, कोई बाउंड्री बनी नहीं है,
1: हाँ
0: खुला
1: सर,
0: जंगल है, तो जानवर
1: और
0: जो हैं पानी की तलाश में भटकते हुए कभी
1: जी
0: गांवों
1: सर
0: में कभी कस्बों में पहुंच ही जाया करते हैं।
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल। और साथ ही शिकार का पीछा करते करते सर बारहसिंगा हो गया, हिरन हो गया। हाँ ये कारण जिम्मेदार है सर
0: और
1: जी।
0: कान्हा किसली की सबसे बड़ी खासियत है कि पूरी दुनिया में अगर जो 12 सिंगे होते हैं वो केवल वहीं पाए जाते हैं,
1: जी सर
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: हमने सुना
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सर जी बिल्कुल।
0: जी, और 12 सिंगों से एक बहुत ही खूबसूरत एक द्वार भी बनाया गया है कान्हा किसली के उद्यान
1: जी
0: में।
1: सर जी सर जी, मुक्की गेट के नाम से
0: जी
1: भी
0: हाँ
1: एक
0: जी हाँ
1: बात
0: जी
1: है सर जी।
0: जी जी जी जी
1: जी
0: तो चलिए, आपसे बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं, लेकिन चूंकि आज का जो कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने हैं, तो आपकी
1: यस
0: पसंद का गीत भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। बताइए क्या
1: सर,
0: सुनना चाहेंगे आप?
1: गीत सुनने से पहले मैं अपने भाई का नाम बताना चाहता हूँ सर। सर मेरा बड़ा भाई है श्रीमान ध्रुवाराम साहू जी, वो भी आकाशवाणी भोपाल के नियमित श्रोता है सर जी। जी सर, आज मैं प्रकृति से जुड़

0: हुई बातें हुई है सर, तो हाथी मेरा साथी फिल्म का गीत है सर, नफरत की दुनिया को छोड़कर वाला।
1: अरे वाह
0: जी सर, अब प्रकृति के
1: बहुत ही खूबसूरत गीत है, रफी साहब का गाया हुआ है।
0: हाँ सर, मैं सभी श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा सर कि अभी क्या है सर, कुछ समय कुछ दिनों बाद हमें वर्षा का देखने मिलेगा सर, तो मैं चाहता हूँ सर हर एक श्रोता कम से कम सर 10 पेड़ लगाए, ना सिर्फ पेड़ लगाए सर बल्कि उनके एक बच्चे की तरह देखभाल करे आगामी 5 साल तक। अगर वो सफलता मिल गई सर तो वो जो है जिस तरह से अग्नि पुराण में भी कहा गया है सर कि एक जो पेड़ होता है वो 10 पुत्रों के समान होता है सर, एक समय पुत्र बाद परेशान करता है लेकिन जो पेड़ है वो हमेशा आपको उपकार करता है सर।
1: बहुत बड़ी बात आपने कही है, इस बात को हम सब अपने जीवन में उतारें तो ये धरती जो इस तरह तप रही है इसका माहौल ऐसा नहीं होगा।
0: जी सर जी बिल्कुल,
1: इस धरती को हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खूबसूरत बनाकर, बहुत सुंदर बनाकर जिस तरह हमें मिली थी उसी तरह हम उन्हें सौंप कर जा सकते हैं। आपने एक अच्छी बात कही है, इस बात का परिणाम भी अच्छा निकले इसी कामना के साथ आपको हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते
0: नमस्ते सर,
1: जी।
0: कैसे हैं आप?
1: हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी अच्छे हैं। आप कौन बोल रहे सर?
1: आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, शिवम।
0: अच्छा जी, नमस्कार सर, धवल से। मैं
1: नमस्कार जी, नमस्कार। किन से हमारी बात हो रही है?
0: हसीना भी मंसूरी बोल रही सर, पालदाना का, इंदौर से।
1: अच्छा जी, हसीना बी, कैसे
0: जी
1: हैं आप?
0: अच्छे सर।
1: इंदौर से बोल रहे हैं आप?
0: जी आपके लिए एक शायरी बोल दूं सर। इस गर्मी में
1: हाँ
0: थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ। जी
1: हसीना भी, आप बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी से।
0: जी बहुत लंबे समय से जुड़े सर। वो पहले जो चुटकुले आते थे ना सर, उसमें भी भेजते थे हम। और पहले फोन इन कार्यक्रम 1 बजे आता था सर, सवा 1 बजे, जो अरविंद सोनी जी प्रस्तुत करते थे उसको। एसएमएस का भी आता था 12 बजे सर।
1: अच्छा जी, आपको पूरी जानकारियां हैं।
0: बहुत सब दूर की जानकारी है सर हमें, मुंबई की भी, यहाँ की भी, आपके यहाँ के भोपाल की भी, हम सब एक ही तो है, आसपास ही तो है सर।
1: चलिए, ये बहुत अच्छा है कि आप सारे केंद्रों से जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं
0: जी, और आपके
1: उनमें।
0: यहाँ सर हमारे लेटर भी 2 महीने से डाले हुए, एक भी लेटर शामिल नहीं हुआ, तो थोड़ा आप छटनी भी कर लिया करो। जैसे इनके आते हैं ना, जिनके रोज सलंग दो दो बार आ जाते हैं, 2:30 बजे भी आ जाएगा, 12 बजे भी आ जाएंगे, तो थोड़ा हमारे भी देख लेना सर।
1: चलिए कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश का जो पत्र आपने भेजा है उस पत्र को हम शामिल कर सकें। आज फोन करें, गीत सुने, कार्यक्रम के लिए कौन सा गीत आपको हम सुनवाएं?
0: सर फिल्म का नाम है रोटी, और गाने के बोले किशोर कुमार की आवाज में, यार हम

0: हाँ जी नमस्कार,
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
0: जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
1: मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तो बताइए मुन्ना जी, क्या हाल है इन दिनों आपके शहर के?
1: सर बढ़िया है, थोड़ी गर्मी से भी राहत मिल गई है।
0: अच्छा अच्छा, हाँ
1: अभी दो तीन दिन से हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है।
0: चलिए मौसम खुशनुमा हो रहा है धीरे धीरे।
1: हाँ जी सर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के माध्यम से दो शब्द बशीरबद्र साहब के लिए कहना चाहता हूँ सर।
0: जी जी।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
0: क्या बात।
1: 18,000 से ज्यादा शेर व शायरी लिखने वाले, 60 साल मुशायरों का हिस्सा रहे शहनशाह पद्म श्री डॉक्टर बशीरबद्र साहब हमारे बीच नहीं रहे। मैं और मेरा पूरा परिवार अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है। यूं तो सदा रहने के लिए कोई यहाँ आता नहीं, जिस तरह आप गए उस तरह कोई जाता नहीं।
0: आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं बशीरबद्र जी के लिए। उनका ये शेर जो आपने पढ़ा वो तो कालजयी शेर है, रहती दुनिया तक ये शेर रहने वाला है। और ऐसा लगता है आप शेरों शायरी में काफी दिलचस्पी रखते हैं।
1: जी सर।
0: साहित्य में तो काफी
1: पुराने गाना का भी शौक है सर।
0: हाँ चलिए, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। यही कलाएं जो हैं इंसान को इंसान बनाती है, इंसानियत के पाठ पढ़ाती हैं।
1: जी सर।
0: बताइए कौन सा गीत इस वक्त आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है पुष्पांजलि का गीत डॉक्टर बशीरबद्र साहब के लिए समर्पित है। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
0: मैं ऋषिक बोल रहा हूँ सर, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला इंदौर से।
1: इंदौर से कौन साहब बोल रहे हैं?
0: मेरा नाम है विवेक व्यास।
1: विवेक व्यास जी
0: जी, और मेरा इस निवास स्थान है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला इंदौर
1: जी।
0: तो सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: जी, इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ शिवम।
0: अच्छा शिवम जी
1: जी,
0: तो सर मुझे देखिए कल क्या है कि महू में बड़ी अच्छी बारिश हुई है, तो इसी मतलब खुशी में मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है स्वर्ण सुंदरी और रफी साहब और लता जी की आवाज है और गाने के बोल है कुहू कुहू बोले कोई अच्छा।
1: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश करी है आपने।
0: और सर एक खासियत इस गाने की मैं बताऊं कि ये जो गाना है, इस गाने का चार बार स्केल चेंज होता है। इसका मुख्य राग है सोहनी है ना, और बाद में जो अंतरा है उसमें एक बार ये राग यमन आता है और एक बार बाहर भी आता है।
1: बताइए
0: है ना जी, और आप कहें तो मैं थोड़ा गुनगुना कर आपको बताऊं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: Ooh, ooh, ooh.

0: बोले कोयलिया। और सर इस गीत के संगीतकार है आदि नारायण जी, ये साउथ के थे और इन्होंने एक ही हिंदी फिल्म में संगीत दिया है।
1: बताइए, एक गीत से भी कोई अपने लिए कितना बड़ा स्थान बना सकता है, उसकी मिसाल ये गीत है।
0: और सर एक निवेदन ये था कि यदि आप इसको लाइव करते सजीव प्रसारण तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि मैं आपको बताऊं सजीव प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले आकाशवाणी भोपाल ने ही की थी, और मैं रहने वाला भी भोपाल का ही हूँ, है ना। तो ये उस समय की बात है जब अब्दुल मन्नान खान साहब हुआ करते थे, राजोचर जी थे, अनिल मुंशी जी थे, है ना। तो ये पहले लाइव हुआ करता था, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भोपाल ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन अब थोड़ा सा ये लगता है कि आपने इसको रिकॉर्डेड क्यों कर।
1: चलिए, आपकी ये बातें जो हैं हमारे अधिकारियों तक हम पहुंचाएंगे और देखते हैं भविष्य में आपकी इस कामना को भी हो सकता है पूरा किया जाए। फिलहाल
0: सजीव में मजा आएगा, और आपका धन्यवाद, आपने मेरा और शामिल इसके लिए धन्यवाद, नमस्ते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: और इसी गीत के साथ संपन्न होता है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने, अभी इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से मुलाकात का कार्यक्रम है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। अमरीका ईरान समझौते के बाद आज घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी के साथ शुरूआत हुई। सेंसेक्स ने लगभग 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर सत्र की शुरूआत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो से बारिश में कमी के बावजूद अनाज की कोई कमी नहीं होगी। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का परिणाम है। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 12 बजे का ये समय है, समय आपकी फरमाइश का। इस कार्यक्रम में आज आपके बहुत सारे खत और आपके पसंदीदा गीत लेकर हाजिर हूं मैं, सुनीता सिंह। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्रोताओं, इन दिनों मौसम अधूरे वादे सा नजर आ रहा है। निगाहें बादलों की राह तकती हैं, कुछ बूंदे आकर मन को छू जाती हैं, ठंडक दे जाती हैं और फिर धूप अपना साम्राज्य फैला देती है। कुल मिलाकर ये मौसम इंतजार का मौसम है, जिसमें छोटी छोटी खुशियों की आशा है, रिमझिम बूंदों की आशा है, जो ठंडक बनकर जीवन पर छा जाए। तो ये इंतजार रखिए बरकरार। इस बीच आपका इंतजार हम खत्म करते हैं। कुछ मधुर गीतों की फुहार आप तक भेजते हैं आपकी ही फरमाइश पर। आइए सिलसिला शुरू करते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों का। श्रोताओं के नाम पहले बताते हैं, उसके बाद गाने की डिटेल्स। कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। सोनुआ झारखंड से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदिनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु और नंदू महतो। ये चिट्ठी आई हुई है ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से। लिखने वाले श्रोता हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता, नेतराम और भूपेंद्र साहू। पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। और लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ ये गीत। शब्द रचना इंदिवर की है, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। खतो किताबत की सदा रस्म को जारी रखना, भूल जाना न हमें याद हमारी रखना।

और अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले की आवाज है। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है एन दत्ता ने और फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम, मुकेश, भावना, सोमेश और यशराज। निम्भोरा से अशोक देशमुख, शरद, बबन जोशी, शिवाजी चौक, बुराला खुर्द से आदिनाथ बाघ और अमोघ बाघ। गोला बाजार बक्सर से इसी गीत को पसंद करते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। ये चिट्ठी आई हुई है राजकोट से। लिखने वाले श्रोता हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। गमों की ओस जब भी दिल पर पड़ी है, तुम्हारी याद सूरज बन गई है।

0: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की

0: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल एक छोटा सा अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा, और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप सबकी फरमाइश पर पारस मणि फिल्म का गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। असद भोपाली का लिखा ये गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया।

0: Radio Sena.
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार और प्रभा देवी तामुरिया। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। गौरीनगर इंदौर से इसी गीत को पसंद करते हैं आनंद कुमार।

दिल तेरा दीवाना कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने इस फिल्म से लिया है। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं, बोल शैलेंद्र के, धुन शंकर जयकिशन की। अनुरोध आप सबका है, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, प्रमिलागंज आलोट, रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति और अतुल, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि, गौतमनगर जिला

श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपकी फरमाइशों का सिलसिला अब यहीं थमता है। इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की 10वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना रामू और बामू ठाकुर साहब से मिलते हैं और शास्त्री यशवंत और बलबीर स्वामी के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देते हैं। पुलिस कुछ मजदूरों को गिरफ्तार कर लेती है। इस बात को लेकर बलबीर स्वामी और यशवंत के बीच बातचीत होती है। बलबीर स्वामी कंपनी के दफ्तर के सामने बेमियादी धरना देने का सुझाव देता है। बलबीर स्वामी यूनियन के सचिव कालूराम के साथ खलासी लंगर में यूनियन के फंड से नशा करते हैं। बसुमती काकी उनकी बातें सुन लेती है और आकर नारायणी को बताती है। इस बात के लिए नारायणी यशवंत से मिलती है और उसे आड़े हाथों लेती है। रामू और बामू चोरी छिपे कंपनी के कलपुर्जे बेचने शुरू कर देते हैं। कंपनी के दफ्तर के सामने बेमियादी धरना दिया जाता है। ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाते हैं और 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60 मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव रखते हैं। बातचीत टूट जाती है। रामू और बामू को पता चलता है कि रात को ठाकुर साहब के घर कोई औरत चोरी छिपे आती है। उनका शक भृगु की बहन पार्वती पर जाता है। दोनों रात के समय ठाकुर के घर की निगरानी करते हैं और औरत को पकड़ लेते हैं। तभी यशवंत वहां आता है और नारायणी को देखकर चौंक जाता है। अब आज

0: क्या बाबू माँ क्या है कि
1: रामू और बामू सुनो, तुम दोनों ने नारायणी से जो भी लिया है उसे वापस करो और इसे बैरक तक छोड़कर आओ।
2: अरे हमें क्या कर दिया उसे बैरक तक छोड़कर?
1: जबान संभाल कर बात कर रामू।
3: ठहरो
1: बलवीर स्वामी, तुम?
3: हाँ मैं। पहले इस बात का फैसला हो जाए कि नारायणी ठाकुर साहब के पास क्यों आई थी। आओ मेरे पीछे आओ। जहां से तुम आ रही हो, ठाकुर साहब के घर।
1: हाँ ठीक है, चलो तुम भी आओ रामू बाबू।
0: चल भाई चल।
3: ठाकुर साहब, अरे ओ ठाकुर साहब।
4: अरे कौन है जो इतनी रात गया आया है?
3: दरवाजा खोलिए ठाकुर साहब, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा।
4: अरे ठहरो भाई, खोलता हूँ दरवाजा।
5: अरे तुम लोग तो यूनियन के आदमी हो।
3: जी हाँ, हम यूनियन के आदमी हैं। और ठीक तरह से जवाब दीजिए, क्या नारायणी खुद आपके पास आई थी या आपने बुलाया था उसे?
1: बोलिए
5: क्या मतलब?
3: मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, बस हमें ठीक ठाक जवाब दीजिए, वरना मैं घर को आग लगा दूंगा।
6: ठाकुर साहब जवाब दीजिए, नारायणी यहाँ क्यों आई थी बताइए इनको?
5: ये औरत आधी रात को मेरे पास पैसे मांगने आई थी। अरे इन सब लोगों के बारे में बिना सोचे विचारे कैसे हड़ताल कर रहे हो तुम लोग? अगले चार दिन के बाद ये भूख से मर जाएंगे।
3: चुप, हम यहाँ तुमसे सलाह लेने नहीं आए हैं। तुम बताओ नारायणी, क्या साहब सच कह रहे हैं? जवाब दो।
1: जवाब दो नारायणी, चुप क्यों हो?
3: मौना स्वीकृति ही लक्षणम। मारो इसे, मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ दो, ताकि फिर ये कभी ऐसा काम करने का साहस न करे।
0: मारो मारो।
1: ठहरो ठहरो, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अब सुनो, इसकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ।
0: यशवंत बाबू
1: तुम चुप रहो, नारायणी तुम चुप रहो। देखो बलबीर स्वामी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि नारायणी से फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
3: अच्छा ठीक है, पहली गलती है इसलिए माफ कर देते हैं, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझा देना कि फिर कभी ऐसी गलती ना करे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
1: अब तुम चिंता ना करो बलबीर स्वामी, मैं इसे सब समझा दूंगा। अब चलो नारायणी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ।

0: इसका मतलब क्या हुआ?
1: इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी किसी भी तरह हमारी हड़ताल को तोड़ना चाहती है। कंपनी को पूरा विश्वास है कि मजदूरों का हड़ताल पर से विश्वास डगमगा जाएगा और वो काम पर वापस लौट आएंगे।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा बलवीर स्वामी, हमारी हड़ताल तो विफल हो जाएगी।
1: नहीं यशवंत, नहीं, हमारी हड़ताल विफल नहीं होगी, हम कामयाब होंगे, मुझ पर भरोसा रखो।
0: अच्छा, ये नए मजदूर परमानेंट हैं या दिहाड़ी पर हैं?
1: वैसे यशवंत, क्यों ना हम इन मजदूरों को भी यूनियन का सदस्य बना लें और इन्हें भी हड़ताल में शामिल कर लें। लेकिन यशवंत, ये संभव नहीं है।
0: अब क्यों? क्या नए मजदूर हमारा साथ नहीं देंगे बलबीर?
1: यशवंत, इन मजदूरों को इसी शर्त पर काम पर रखा गया है कि न तो ये यूनियन के सदस्य बनेंगे और न ही कभी हड़ताल करेंगे। बाकायदा इन मजदूरों से कंपनी की शर्तों पर दस्तखत करवा लिए गए हैं। इन मजदूरों को पीस वर्कर का नाम दिया गया है।
0: देखो बलवीर स्वामी, मजदूरों की हड़ताल को आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। अरे मजदूरों के घरों में कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी भूख की आग में जल रहे हैं। ऐसे में हड़ताल को और कितने दिनों तक खींचा जा सकता है?
1: यशवंत, जब तुम्हें हिम्मत हार जाओगे तो मजदूरों को हिम्मत कौन बंधाएगा? हौसला रखो, हौसला ही हम सब लोगों की सबसे बड़ी ताकत है।
0: लेकिन भूखे पेट कोई हौसला रखे भी तो कब तक? कब तक बलबीर स्वामी, कब तक?
1: मजदूरों की पीड़ा समझने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उनकी पीड़ा दूर भी करनी होगी। हाँ, मजदूरों की पीड़ा दूर होगी तभी उनमें नए उत्साह का संचार होगा। और तो और, दुख की बात तो यह है कि हमने यूनियन का जो प्रतिनिधिमंडल दिल्ली मुख्यालय भेजा था वो अभी तक लौट कर नहीं आया है।
0: अब
1: फिर भी तुम चिंता मत करो, हम शास्त्री जी से इस विषय में बात करेंगे।
0: ठीक है। अरे बलबीर,
1: हाँ,
0: ये कौन आ

0: अरे अरे कालूराम, तुम इस वक्त यहाँ?
1: अरे हाँ बलवीर भाई, वो क्या है कि शास्त्री जी के यहाँ से खबर आई है कि दिल्ली गया हुआ हमारा प्रतिनिधि मंडल वापिस लौट रहा है।
0: हाँ, अरे वाह, हाँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने।
2: हाँ,
0: अब चिंता की कोई बात नहीं यशवंत, मुख्यालय से आने वाले आदमी कंपनी के अधिकारियों से मिलकर बातचीत करेंगे, हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी, सारे मजदूर परमानेंट होंगे और कोई भी दिहाड़ी मजदूर नहीं रहेगा।
2: अब हम लोग शास्त्री जी से मिलने कब चल रहे हैं बलबीर?
0: परसों सुबह। हाँ एक बात और।
2: अरे अब कौन सी बात रह गई?
0: देखो शाम के वक्त जब नए मजदूरों को पगार मिलती है उस समय तुम अपने मजदूर साथियों के साथ जुलूस निकालोगे, नारे लगवाओगे तुम।
2: लेकिन बलबीर इससे तो हमारा पीस वर्करों के साथ संघर्ष हो सकता है, खून खराबा भी हो सकता है।
1: अरे तो कोई परवाह नहीं। देखो यशवंत भाई, अगर कुछ मजदूरों का खून बहता है तो बह जाने दो।
2: क्या?
3: दादी माँ
4: बेटी,
3: कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया।
4: आरती,
3: कुछ खाने को दो।
4: घर में एक दाना नहीं है बेटी, एक भी दाना नहीं है, हम भी कई दिन से भूखे हैं।
3: दादी
4: भला तुझे कहाँ से खाने को दें?
3: दादी माँ अगर मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी।
4: पार्वती
3: मैं मरना नहीं चाहती दादी, मैं मरना नहीं चाहती।
4: पार्वती
3: मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादी।
4: अब तू क्यों रो रहा है भृगु?
5: कितना लाचार हूँ मैं, कितना लाचार, अपनी बेटी और पूरी माँ का पेट तक नहीं भर सकता मैं।
4: अरे आग लगे यूनियन बाजी को, जिसने हमारे बच्चों के पेट से रोटी छीन ली। अरे क्या फायदा हुआ इस हड़ताल से, क्या फायदा हुआ?
3: बापू मत रो, बापू मत रो दादी, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी, अगर भूख लगेगी तो पानी पी लूंगी, मगर आप लोग मत रो, मत रो बापू, मत रो दादी।
2: शास्त्री जी, धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है। अरे सफाई कर्मचारियों की हालत और भी खराब हो गई है, मुंशीगंज के किसान गेहूं देने से मना कर रहे हैं। पीस वर्कर और हमारे मजदूरों के बीच देखिए कभी भी झगड़ा हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, खून की नदियां बह सकती हैं शास्त्री जी, खून की नदियां।
6: अच्छा देखो भाई, मुख्यालय से प्रतिनिधियों को आने दो, फिर हम सब मिलकर कंपनी के अधिकारियों से बात करेंगे। हैं? अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
2: हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है शास्त्री जी, पिछली सरकार ने सन 1976 का बोनस नहीं दिया, नई सरकार ने ये बिल पास किया है लेकिन कंपनी 1977 में ये बोनस देने का वादा करके भी मुकर रही है। फिर हमारी तीसरी मांग यानी मजदूरों की छटनी बंद करने का फैसला पहली बैठक में नहीं लिया जा सका था, दूसरी बैठक में ही इसका कोई फैसला हो सकता है शास्त्री जी।
6: ओफो, अरे तुम लोगों के पास आत्मबल नहीं है, बिना किसी ज्ञान के नेता बनने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है।
2: अब
6: मुझे सलाह देने आए हो तो सुनो, ये हड़ताल चलती रहेगी समझे तुम?
2: शास्त्री जी सुनने में आया है कि दिल्ली मुख्यालय से प्रतिनिधि मंडल यहाँ आ रहा है।
6: आ तो रहा है, तो फिर
2: हमारी यूनियन चाहती है कि यूनियन के स्थानीय नेता यानी हम लोग उनसे मिले, कंपनी अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत में शामिल हों।
6: सुनो मेरी बात, मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ तुम लोगों की बैठक नहीं हो सकती समझे?
2: लेकिन शास्त्री जी,
6: लेकिन कुछ नहीं, मिठाई मत दिखाओ। अरे तुम लोगों में कितना जोश है भाई, मुख्यालय वाले को भी जानने दो है? अरे मैं लीगल फाइट करवा दूंगा, लीगल फाइट, आसपास के दूसरे कारखानों में भी टोकन स्ट्राइक शुरू हो जाएगी।
2: हमारे फंड में बिल्कुल पैसा नहीं है शास्त्री जी, बाहर से कोई सहायता भी नहीं आई है,

0: ऐसी स्थिति में और दूर तक सोचना भी असंभव है, बिल्कुल नामुमकिन। आपको पता है हड़ताली मजदूरों में भुखमरी फैल गई है। अरे कुछ दिन बाद मजदूरों की लाशें बिछनी शुरू हो जाएंगी, तब क्या होगा शास्त्री जी, तब क्या होगा?
1: ये सब उस लेबर इंस्पेक्टर का किया धरा है, वही मुंशीगंज के किसानों को तुम मजदूरों के खिलाफ भड़का रहा है।
0: क्या वो मोटा लेबर इंस्पेक्टर लोगों को भड़का रहा है?
1: हाँ, मुझे पक्की खबर मिली है। अरे कुछ दिन पहले वो किसानों से कहता फिर रहा था कि
2: सुनो मुंशीगंज के किसानों, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी किसान हड़ताली मजदूरों की मदद नहीं करेगा, उन्हें गेहूं चावल उधार नहीं देगा।
3: हाँ बिल्कुल नहीं देगा, ये हड़ताल गैर कानूनी है। अरे भूखा रहने पर जब मजदूरों का पेट उनकी पीठ से चिपक जाएगा तो हड़ताल का नशा भी उतर जाएगा।
2: लेकिन कुछ नहीं, ये कंपनी अपने मजदूरों को दूसरी कंपनियों से 30% अधिक देती है। द वेजेस ऑफ वर्कर्स आर लिंक्ड विद द प्राइस अंडर।
4: अरे इंस्पेक्टर साहब, ये अंग्रेजी में क्या इंटरप्रेटर कर रहे हो?
3: अरे होगा कोई कानून? सुनो, अगर अब हम मजदूरों की मदद करेंगे तो हमें भी जेल हो जाएगी।
2: गुड, वेरी गुड। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे।
3: हाँ
5: ये क्या है?
1: दुश्मन का सामना करना सीखो। अरे फंड खत्म हो गया है तो दिमाग से काम लो, दिमाग से। सुनो, सुना है एक ट्रक में भरकर कंपनी की सीमेंट रायबरेली पहुंच रही है, समझ से काम लो, समझ से।
0: लेकिन इससे भयानक कांड हो सकता है शास्त्री जी।
6: पुलिस चारों तरफ गश्त लगा रही है, गोलीबारी भी हो सकती है।
1: धिक्कार है तुम लोगों पर, धिक्कार है तुम लोगों पर। ओ, तुम लोग ऐसे काम के लायक हो ही नहीं। जाओ, अरे जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से।
6: चलो
7: चलो। अरे यशवंत, आज ये कंपनी के दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस ही है ना?
0: अरे हाँ, ये तो नया नोटिस है। आज की तारीख है इस पर।
7: जरा पढ़कर तो सुनाओ, मैं अपना चश्मा भूल आया हूँ।
0: हाँ पढ़ता हूँ। लिखा है, यूनियन के नेताओं, तुम लोगों ने मजदूरों को गलत रास्ता दिखाया है। तुम लोगों ने अपनी बेबुनियाद मांग रखकर कंपनी को धमकी दी।
7: अच्छा,
0: काम खत्म होने के बाद धीरे धीरे दिहाड़ी मजदूरों की छटाई होगी। ये कंपनी का कानून सम्मत काम है, उच्चतम न्यायालय भी इसे मानेगा।
7: ओह, तो अब कंपनी यूनियन को कमजोर करने के लिए इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आई है, नए नए हथकंडे अपना रही है।
0: लेकिन बलबीर, अगर उच्चतम न्यायालय ने सचमुच कंपनी के इस नोटिस को मान्यता दे दी तो क्या होगा? अरे बेचारे दिहाड़ी मजदूर तो कहीं के नहीं रहेंगे।
7: चिंता मत कर यशवंत, अंत में जीत हमारी ही होगी, मजदूरों को उनका हक मिलकर रहेगा। आखिर जिन मजदूरों ने अपनी जिंदगी के 20-20 साल दिए हैं, क्या उनका कंपनी पर कोई हक नहीं बनता?
0: अरे बिना मजदूरों के कंपनी का क्या अस्तित्व? उन मजदूरों का कंपनी पर पूरा हक है।
7: हाँ,
0: अपने खून पसीने से सींचा है मजदूरों ने इस कंपनी को।
7: जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन मजदूरों को उनके हक से वंचित नहीं होने देंगे। और इसके लिए भले ही हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी।
0: ठीक कहते हो बलबीर।
8: कितने दिन हो गए खाना खाए, ठीक से याद भी नहीं, सूख कर काटा हो गई हूं। मेरा बच्चा भी भूख से किस तरह बिलबिला रहा है, और मेरा बीमार पति वो तो कंकाल बनकर रह गया है। भगवान, कब तक जिंदा रह पाएंगे हम लोग इस तरह?

समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कमजोरी के कारण मेरा सिर चकराने लगा है। एक कदम

0: खाली टुकड़े पड़े हुए हैं। किस तरह ढक छिपा कर गई थी मैं उसे, पता नहीं किसकी निगाह पड़ गई। क्या करूं मैं, क्या करूं, पता नहीं किसने खाया होगा मेरी इस तरबूज को। हाँ, किसने खाया होगा। अरे अरे, यहां तो बसुमती काकी बैठी हुई है। हाँ, जरूर जरूर इसी ने मेरा तरबूज चबा चबा कर खा डाला है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। बसुमती काकी, बसुमती काकी।
1: अरे कौन, नारायणी, आजा आजा आजा, यहां बैठ। देख, एक तरबूज लगा हुआ था। अरे बंदरों की नजर तो नहीं पड़ी, हमारी पड़ गई। हाय हाय, बहुत दिन के बाद पेट में गया। हाँ, दो चार दिन और जी लेंगे हम।
2: क्या बात है नारायणी, अरे तो मुंह लटकाए क्यों खड़ी है।
0: राक्षसनी बुढ़िया, कितना छिपा कर रखा मैंने इसे, फिर भी तेरी कित निगाह पड़ गई इस पर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे बारे में
2: कैसी बात कर रही है नारायणी तू।
0: मेरे तरबूज
2: नारायणी, अरे हम तेरा दुख समझते हैं।
1: हाय हाय हाय हाय, देख तो तेरा शरीर कीड़े लगे पपीते जैसा ढीला पड़ गया है। हाय
0: हाय काकी,
1: नारायणी,
0: वो तरबूज मैंने अपने लिए छिपाया था, क्यों खा लिया तुमने, क्यों।
2: अरे ये जमीन क्या तेरे बाप की है, है? जो उस तरबूज को अपना बता रही है। क्या तू नहीं जानती, दो दिन पहले जंगली जलेबी को लेकर भयंकर मारपीट हो गई थी। चल छोड़ ये सब, छोड़, यहाँ बैठ मेरे पास, आजा। ये तो गुमसुम कैसे बैठ गई। नारायणी, पेट में बच्चा बच्चा है क्या।
0: काकी,
2: अरे सुन, हम छठवे महीना में भी पेट से बच्चा निकाल सकते हैं।
1: हाँ, जैसे जंगली डूमर का फल काट कर उसका बीज निकाला जाता है।
2: अरे सुन तो, जंगली जलेबी के रस से हम दवाई बना सकते हैं।
1: अरे कंवर बेद में जब हम रहते थे ना, तो ऊंट के मुंह से निकलने वाली झाग से दवाई बनानी सीखी थी। बहुत बढ़िया दवाई होती है ये, सांप के जहर से भी तीखी। हाँ, तू कहे तो तेरे लिए दवा बना दूं, है?
2: अरे कमर बेद में हमने एक औरत से खास दवाई बनानी सीखी थी। मुंह काला करके आई औरत को मरघट ले जाकर।
0: चुप रह बुढ़िया, वरना तेरा गला घोंक दूंगी मैं।
2: अरे नारायणी, हैं? अरे रे रे, हम जानते हैं तुझे बच्चा गिराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमको तो पता है, ठाकुर साहब को ध्वजपात की बीमारी है।
0: क्या,
2: तू चिंता न कर नारायणी, हमको सब याद है। अरे तूने भी सुना होगा, बेकी नदी पर बने पुल पर हमारा काम लगा हुआ था।
3: बाप रे, भयानक बारिश, बिजली की चमक और गर्जन, 5 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश,
2: और जब बारिश कम होती तभी काम शुरू होता। तब हम साहब के कपड़े धोते थे, उस समय लकड़ी के फट्टे पर से कई मजदूरन का पैर फिसल गया। अरे बहुत से तो मजदूर धड़ाम से गिरे, और एक मजदूर के सीने में तो सरिया आर पार हो गया था। हाय हाय, वो तो तुरंत ही मर गया था, और 2 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
0: ए बुढ़िया, क्या बकबक कर रही है तू।
2: ये बकबक नहीं है रानी, अरे बहुत कम लोगों को पता है कि मजदूरों के साथ ठाकुर साहब भी गिर गए थे।
3: हाँ,
2: और ये तो बाद में पता लगा कि बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म हो गई उनकी।
3: हाँ
0: काकी, तुम सच कह रही हो ना।
1: और नहीं तो क्या, अरे हम ऐसे ही रामायण गाते हैं। अरे हमारी बात बिल्कुल सच है नारायणी।
0: इसका मतलब आप मानती हैं

0: नहीं हूँ। मेरा ठाकुर साहब से कोई गलत रिश्ता नहीं है।
1: कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं।
0: काकी, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। काकी, काकी मुझे माफ कर दो।
1: अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है नारायणी। ये भूख जो करवाए सो कम है। अरे भूख तो एक माँ को बेटे का मांस खिला देती है, एक बेटे का मांस माँ को।
0: काकी, काकी एक तुम ही हो जिसने मेरे चरित्र पर विश्वास किया, वरना वरना सब के सब मुझे गलत समझते हैं, गलत समझते हैं काकी, गलत समझते हैं।
1: नारायणी, ये नारा सुन रही है तू? होशियार रहे, ये नारा किसी का नहीं है। अरे रुपए की झंझनाहट सारे नाश को कब्र में ले जाएगी। ये नारा तो मुझे भी कब्र में ले जाने के लिए ही बना है। अरे इससे किसी की भलाई नहीं होगी। ये देख, ये मेरी कुबड़ी पीठ देख, अरे हमारे बालक देख, अरे अपने लड़के की हालत देख। ये सब हालत हड़ताल और नारों की देन है।
0: हाँ काकी,
1: आज हम पर कुत्ते भौंकते, बालक पत्थर मारते हैं। अब तो हमारे मरने के दिन दूर नहीं है। ये नारा हम बहुत सुन चुके, बहुत सुन लिया ये नारा। ये जो नेता मजदूरी करने वाले मजदूरों को भूखा रख

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अगले संग्रहालय से इस कार्यक्रम में जंग लगी तलवार इस धारावाहिक की 10वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कुनो अभयारण्य जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात का कार्यक्रम है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में आयोजित मास्टरमाइंड सम्मेलन में कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो से बारिश में कमी के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र

0: जारी कर दी है। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से शुरू होगा। ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट के मंदाकिनी और माधकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान दान तर्पण और पूजा अर्चना की। और प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले चार दिनों तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं महक गुप्ता और स्वास्थ्य दर्पण में एक बार फिर हम हाजिर हैं स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम हमेशा आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और खुशहाली को समर्पित रहता है। श्रोताओं, अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि रात बिरात घर में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए या फिर सेहत को लेकर अगर कोई सवाल मन में आ जाए जिसका जवाब तुरंत चाहिए हो, तो हमें सोचना पड़ता है कि डॉक्टर के पास कैसे जाएं, कब जाएं। हर कोई बार बार छोटी मोटी बीमारियों के लिए तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, या फिर सुदूर इलाकों में रहने के कारण उनके लिए अस्पताल तुरंत पहुंचना संभव नहीं होता। ऐसे असमंजस में हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, किससे सलाह लें। इसी गंभीर समस्या का स्थायी और सरल समाधान करने के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवाओं को शुरू किया। ये नंबर्स केवल अंकों का एक समूह नहीं है, बल्कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या सामान्य स्वास्थ्य परामर्श के समय एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। तो जल्दी से कागज कलम उठाइए, क्योंकि अब जो जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी सेवाओं में सबसे प्रमुख और उपयोगी नंबर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 104। यदि आप किसी भी साधारण बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, मामूली बुखार, उल्टी या पेट दर्द से परेशान हैं, तो तुरंत अस्पताल जाने की स्थिति में नहीं है, तो आप सीधे अपने मोबाइल से 104 यानी 104 नंबर डायल कर सकते हैं। इस नंबर पर 24 घंटे योग्य चिकित्सा सलाहकार, नर्स, डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, जो आपकी समस्या का समाधान करके आपको उचित प्राथमिक उपचार तथा दवाइयों का परामर्श दे सकते हैं। इसके साथ ही इस हेल्पलाइन के माध्यम से आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य जानकारियों के बारे में, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना और अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पतालों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आपातकालीन और संकट की स्थिति के लिए देश भर में 112 और 108 जैसी बेहतरीन एम्बुलेंस और राहत सेवाएं भी पूरे जोश शोर से काम कर रही हैं। जहां 108 नंबर मुख्य रूप से मुफ्त अस्पतालीन एम्बुलेंस सेवा के लिए जाना जाता है, जो गंभीर मरीजों या दुर्घटना में जूझ रहे लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाती है, वहीं 112 ऐसे एकीकृत अस्पतालीन नंबर है जो देश के किसी भी कोने में आपको तुरंत चिकित्सा, पुलिस या फायर ब्रिगेड की मदद एक साथ पहुंचाने में सक्षम है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में ये सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। यही नहीं, आजकल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी समाज में जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर

मानस हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की है। ये नंबर है 1-4-4-1-6। अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से असहज महसूस कर रहा है, लगातार तनाव में है या किसी को अपने मन की बात साझा करनी हो तो वो इस नंबर पर कॉल करके अनुभवी मनोवैज्ञानिकों से और विशेषज्ञों से मुफ्त और पूरी तरह गोपनीय परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ ही डिजिटल इंडिया के इस दौर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की हेल्पलाइन नंबर है 1-4-4-7-7। मैं नंबर एक बार फिर से बताती हूँ, 1-4-4-7-7। ये भी लोगों को बहुत काम आ रही है, जहाँ आप अपने डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजिटल आईडी, ये सभी एक जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी सेवाओं की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पूरी तरह निशुल्क है और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि देश भर के नागरिक अपनी भाषा में खुलकर अपनी बात कह सके और मदद प्राप्त कर सके, मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। ये हेल्पलाइन नंबर्स हमें बताते हैं कि एक साधारण सा फोन नंबर इस लायक है कि वो हर स्वास्थ्य सेवा को आपके दरवाजे तक ला सके। उम्मीद है कि आपने ये सभी नंबर्स जरूर नोट किए होंगे, ताकि मुश्किल समय में ये आपके काम आ सके। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का ये पहला प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य दर्पण में अब वक्त हो गया है आज की भेंट वार्ता का। आज की भेंट वार्ता का विषय है योग, स्वस्थ जीवन की आधारशिला। वार्ताकार हैं गोविंद सिंह चौहान।
1: स्वस्थ भारत का विचार केवल अस्पतालों दवाओं तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसी आधारशिला है जिस पर देश का आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति टिकी है। यदि नागरिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वे अधिक उत्पादक बनते हैं, शिक्षा बेहतर ग्रहण करते हैं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ भारत का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति। स्वस्थ भारत की असली आधारशिला यौगिक जीवन शैली में है। महर्षि पाताल जी ने कहा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्थ सिद्धा प्राणायामः, अर्थात आसन सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के मुख्य प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं नाक से श्वास ले, बाएं नाक से छोड़े, बाएं से ले, दाएं से श्वास छोड़े, अनुपात इसका रहेगा 1:2 या फिर 1:4:2। लाभ इसके क्या क्या हैं? नाड़ी शुद्धि, मन शांत, रक्तचाप संतुलित, तनाव अनिद्रा में लाभ मिलता है। दूसरा, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम की कुछ सीमाएं होती है। बहुत धीरे अभ्यास करे, हृदय से संबंधित रोगी कुंभक ना लगाए। दूसरा है प्राणायाम में कपाल भाती, नाक से श्वास को बाहर करें, पेट को अंदर करें, श्वास लेना सहज रूप से। लाभ इसके हैं, पेट की चर्बी घटती है कपालभाति प्राणायाम से, पाचन तेज, फेफड़े शुद्ध होते हैं, मस्तिष्क सक्रिय तथा कफ दोषों का नाश होता है। इसकी सीमाएं होती है हाई बीपी हार्ड पेशेंट तथा गर्भवती महिलाएं ना करें, अल्सर हर्निया वाले भी ना करें, गर्मी के दिनों में कम करें। तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, लोहार की धोखनी जैसे तेज श्वास लेना छोड़ना, 20 बार करके कुंभक लगाएं। भ्रामरी प्राणायाम यह है चौथा, आंख कान बंद करके भंवरे जैसी मधुर गुंजन करें, इसके लाभ तुरंत तनाव अवसाद खत्म, माइग्रेशन में राहत, क्रोध चिंता शांत तथा उच्च रक्तचाप में लाभ तथा नींद अच्छी आती है। पांचवा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, गले को हल्का सिकुड़कर खराटे जैसी आवाज के साथ श्वास लेना और छोड़ना, थायराइड में लाभ प्राप्त होता है, गला फेफड़ा मजबूत तथा मन एकाग्र, शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। इसकी सीमाएं हैं बीपी वाले सावधानी से करें तथा कुंभक न लगाएं। छठा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम अथवा शीतकारी प्राणायाम, जीभ को नलीदार बनाकर या दांतों से श्वास अंदर खींचे तथा नाक से छोड़े। इस प्राणायाम के जो लाभ है, शरीर को ठंडक देता है, एसिडिटी जलन शांत, बीपी सामान्य होता है तथा भूख प्यास में नियंत्रण स्थापित होता है। सूर्य वेदन प्राणायाम, केवल दाएं नाक से श्वास लेना तथा बाएं से छोड़ना। इस सूर्य वेदन प्राणायाम के लाभ है कि शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, सुस्ती कफ दूर होता है, पाचन तेज होता है तथा लो बीपी में फायदा होता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, हाई बीपी, हृदय रोगी, पित्त प्रकृति वाले इस अभ्यास को ना करें। आठवां प्राणायाम है चंद्र वेदन प्राणायाम, इसमें केवल बाएं नाक से श्वास ले तथा दाएं से श्वास को छोड़ना है। इसके लाभ है शरीर को शीतलता, हाई बीपी में लाभ, पित्त शांत तथा अनिद्रा में लाभ प्राप्त होता है। चंद्र वेदन प्राणायाम की कुछ सीमाएं होती है, लो बीपी, सर्दी जुकाम, अस्थमा वाले इस अभ्यास को ना करें। प्राणायाम के जो यौगिक लाभ बताए हैं उसमें फेफड़ों की क्षमता 3 से 5 गुना बढ़ती है तथा ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है, हृदय मजबूत, रक्तचाप नियंत्रित तथा कोलेस्ट्रॉल घटता है, पाचन तंत्र, लीवर, किडनी सक्रिय, डायबिटीज, मोटापा, कब्ज में लाभ होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, 80% रोग

पांच दोष से होते हैं। हार्मोन संतुलन, थायराइड, पीसीओडी तथा अनिद्रा में लाभ प्राप्त होता है। प्राणायाम के मानसिक लाभ, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, भ्रामरी 5 मिनट में असर देता है। एकाग्रता, स्मृति निर्माण लेने की शक्ति बढ़ती है। नकारात्मक विचार रुकते हैं, मन प्रसन्न रहता है। क्रोध, चिड़चिड़ापन ठीक होता है। आध्यात्मिक लाभ इसके बताए, नाड़ी शुद्धि से कुंडलिनी जागरण की तैयारी, चित्त शांत होकर ध्यान में प्रवेश आसान होता है, प्रत्याहार सिद्ध होता है तथा

में असर देता है। एकाग्रता, स्मृति निर्माण लेने की शक्ति बढ़ती है। नकारात्मक विचार रुकते हैं, मन प्रसन्न रहता है। क्रोध, चिड़चिड़ापन ठीक होता है। आध्यात्मिक लाभ इसके बताएं, नाड़ी शुद्धि से कुंडलिनी जागरण की तैयारी, चित्त शांत होकर ध्यान में प्रवेश आसान होता है, प्रत्याहार सिद्ध होता है तथा इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। प्राणायाम करने की पूर्व सावधानियां हमें कुछ बरतनी होती है। खाली पेट जरूरी होना चाहिए, भोजन के 4 घंटे पहले ही करें। सुबह का समय प्राणायाम के लिए अति उत्तम माना गया है। प्राणायाम गुरु के सानिध्य में सीखे। कुंभक वाले प्राणायाम गलत करने से हानि की संभावना रहती है। रोग के अनुसार चुनाव, हाई बीपी वाले भस्त्रिका, कपालभाती, सूर्यभेदन प्राणायाम ना करें। लो बीपी वाले शीतली, चंद्रभेदन प्राणायाम ना करें। शुरू में 5-5 मिनट करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। जबरदस्ती श्वास ना रोकें। वर्जित स्थितियां, बुखार, चक्कर, ऑपरेशन के बाद गर्भावस्था, मासिक धर्म में कुंभक ना करें, प्राणायाम ना करें। शांत जगह हो, पंखे तथा एसी की सीधी हवा में ना करें। क्रम इसका रहेगा, पहले षटकर्म हो, उसके बाद आसन करें, आसन के बाद प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद ध्यान करें और फिर सीधे प्राणायाम ना करें। निष्कर्ष यह है कि प्राणायाम स्वस्थ भारत की सांस है, यह दवा नहीं, दवा की जरूरत को खत्म करने का विज्ञान है। महर्षि पातालिनी ने आसनों को स्थिर सुखम आसनम कहा है, जिसमें शरीर स्थिर और मन सुखी हो। बाद में हठयोग में 84 लाख योनिया के प्रतीक 84 प्रमुख आसन बताए गए हैं। आसनों को मोटे तौर पर 7 भागों में बांट सकते हैं, जैसे खड़े होकर किए जाने वाला आसन, उदाहरण के तौर पर ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, कटिचक्रासन, गरुड़ासन, नटराजासन। घुटने, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है, फेफड़े खुलते हैं, श्वास गहरी होती है, आलस दूर होता है, स्फूर्ति आती है। इन खड़े होकर आसनों में कुछ सीमाएं भी होती है। घुटने में तेज वर्टिगो की, हाई बीपी, त्रिकोणासन में सावधानी करें। गर्भावस्था के अंतिम महीनों में संतुलन वाले आसन ना करें। बैठकर किए जाने वाला आसन, उदाहरण के तौर पर पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन। ध्यान के लिए उत्तम आसन, रीढ़ सीधी रहती है, पाचन तंत्र मजबूत। वज्रासन भोजन के बाद भी कर सकते हैं। रीढ़ में लचीलापन, साइटिका में आराम मिलता है, मन शांत होता है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में कुछ सीमाएं हैं, जैसे घुटने, टखने की चोट में पद्मासन ना करें, पाइल्स फिशर में वज्रासन देर तक ना करें, स्लिप डिस्क में तीव्र मरोड़ वाले आसन वर्जित है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर है भुजंगासन, शल्वासन, धनुरासन, मकर आसन। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के योगिक लाभ, जैसे रीढ़ की हड्डी लचीली, कमर दर्द में राहत मिलती है, पेट के अंगों की मालिश होती है, कब्ज अपच दूर, फेफड़े हृदय सक्रिय होते, थायराइड ग्रंथि संतुलित होती है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में कुछ सीमाएं होती है, जैसे हार्निया, अल्सर, पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो ना करें, गर्भावस्था में पूरी तरह वर्जित है। हाई बीपी, हृदय के रोग में भुजंगासन धीरे धीरे करें। चौथा जो भाग है, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, उत्तानपादासन, चक्रपादासन। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के यौगिक लाभ, जैसे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि में संतुलन होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, रक्त संचार सिर की तरफ बढ़ता है, चेहरे पर चमक आती है, रीढ़ और गर्दन का तनाव दूर होता है, गैस, कब्ज, मोटापे में बहुत लाभ होता है। इनकी सीमाएं, सर्वांगासन, हलासन, हाई बीपी, सर्वाइकल, चक्कर, हृदय रोग, गर्भावस्था में ना करें, ग्लूकोमा, रेटिना समस्या में उल्टे आसन वर्जित है, गर्दन में दर्द हो तो तकिया लगाकर करें। पांचवा भाग है आगे झुकने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर पश्चिमोत्तासन, पद्मासन, जानुशीर्षासन, बलासन, उग्रासन। इन आसनों के यौगिक लाभ, पैर की पीछे की खुलती हुई लचीलापन, पाचन अंगों पर दबाव, लीवर, किडनी सक्रिय, डायबिटीज में लाभकारी। इन आसनों की कुछ सीमाएं होती है, जैसे स्लिप डिस्क, साइटिका में झटके से आगे ना झुके, अस्थमा अटैक के समय ना करें, अल्सर दस्त में पेट दबाने वाले आसन ना करें। छठा है पीछे झुकने वाले आसन, उदाहरण के तौर पर जैसे चक्रासन।

0: उष्ट्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, पीछे झुकने वाले आसनों के योगिक लाभ, छाती खुलती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, अस्थमा में लाभ होता है, रीढ़ को उल्टी दिशा में खिंचाव, कमर दर्द ठीक, एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय तथा सुस्ती दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कमर दर्द तीव्र हो तो ना करे, हार्निया, हाई बीपी, हृदय के रोग, वर्डिगो में वर्जित है, गर्भावस्था में ना करें। सातवां और अंतिम भाग जो है वो संतुलन और विपरीत करणी आसन, जैसे उदाहरण के तौर पर शीर्षासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, बकासन, पादांगुष्ट आसन, तोलांगुल आसन। इन आसनों के योगिक लाभ, हाथ कंधे बहुत मजबूत होते हैं, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह एकाग्रता, स्मृति तेज होती है, हार्मोन संतुलन, पिट्यूटरी ग्रंथि सक्रिय होती है, पाचन तेज, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। इन आसनों की कुछ सीमाएं, जैसे शीर्षासन सबसे जोखिम वाला है, बिना गुरु के बिल्कुल नहीं करें, हाई बीपी, हृदय रोग, गर्दन दर्द, चक्कर, आंख की बीमारी में वर्जित है, महावारी गर्भावस्था में ना करें। अंत में हम यही कह सकते हैं कि स्वस्थ भारत की आधारशिला योग है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर एक स्वस्थ भारत की आधारशिला रखेंगे। धन्यवाद
1: श्रोता, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का योग पर आधारित ये भेंटवार्ता पसंद आई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का अगला ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, विज्ञान की प्रगति अब चिकित्सा जगत को इतना क्रांतिकारी मोड़ पर ले आई है जहां तकनीक हमारी रोजमर्रा की आदतों से हमारी सेहत का हाल जान सकती है। जी हां, स्वास्थ्य और तकनीक में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अद्भुत तकनीक की जो आने वाले समय में बीमारियों की पहचान और उसके निदान का तरीका पूरी तरह से बदलने वाली है। हम बात कर रहे हैं वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी आवाज आधारित स्वास्थ्य तकनीक। श्रोताओं, हम सभी का ये सामान्य अनुभव है कि जब भी हम बीमार होते हैं अक्सर हमारी आवाज भारी हो जाती है, बैठ जाती है या उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। हमारी माँ या घर के बुजुर्ग अक्सर सिर्फ हमारी आवाज सुनकर ही

0: तुरंत पहचान लेते हैं कि आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस इसी प्राकृतिक और जैविक सिद्धांत के आधार पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को जोड़कर तकनीक बनाई गई है। वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति के बोलने के तरीके, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, पिच, बोलने का तरीका, तीव्रता और शब्दों के बीच के सूक्ष्म ठहराव को बिल्कुल बारीकी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए विश्लेषण करके ये बता सकती है कि कौन सी बीमारी होने की संभावना है। विज्ञान की भाषा में इसे वोकल बायोमार्कर्स या आवाज के जैविक लक्षण भी कहा जाता है। ये लक्षण इतने महीन और सूक्ष्म होते हैं कि सामान्य इंसानी कान से शायद इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो, लेकिन कंप्यूटर के एल्गोरिदम इन्हें कुछ ही सेकंड में पहचान लेते हैं। साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स का मानना है कि हमारी आवाज का सीधा संबंध हमारे श्वसन तंत्र, हमारे मस्तिष्क और हमारी तंत्रिकाओं से होता है। इसलिए जब भी शरीर के अंदर कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है या गड़बड़ होती है तो उसका सीधा असर हमारी आवाज के पैटर्न पर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये तकनीक एक अद्भुत क्रांति लेकर आई है। कुछ ही सेकंड की रिकॉर्डिंग से 70-90% तक की सटीकता के साथ ये बता सकती है कि व्यक्ति को डिप्रेशन या तनाव तो नहीं है। केवल मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसी गंभीर तंत्रिका तंत्र से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को भी वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से समझ सकती है इससे पहले कि बाकी लक्षण दिखाई देने लगें। इसी तरह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक कफ जैसी फेफड़ों की बीमारियों में भी मरीज के सांस लेने का तरीका बदल जाता है तो उसकी आवाज की तरंगों को ये बहुत अच्छे से समझकर डॉक्टर की मदद कर सकता है, एक ग्राफ बनाकर दे सकता है कि इस पेशेंट के लक्षणों का निदान किस तरह किया जा सकता है। इस तकनीक की सबसे अच्छी बात ये है कि ये गैर आक्रामक है, यानी कोई भी शरीर में दर्द नहीं होता, कोई सुई नहीं लगती, किसी मशीन के अंदर जाकर घंटों तक बैठना नहीं पड़ता, बस आपको अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी पड़ती है। हालांकि विशेषज्ञों ने ये बहुत अच्छे से साफ तौर पर बताया है कि ये तकनीक मुख्य रूप से शुरुआती स्क्रीनिंग और बीमारी की निगरानी के लिए है। ये किसी भी तरह से डॉक्टर का विकल्प नहीं है, बस डॉक्टरों का काम आसान करने के लिए बनाया गया है। श्रोताओं, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आज के आखिरी गीत का। श्रोताओं माफ कीजिएगा, हमारे पास समय की बेहद कमी है तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम थोड़ा सा समापन की ओर लेकर चलते हैं। आज के स्वास्थ्य दर्पण में हमने जाना कि जहां एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर संकट के समय में तुरंत मुफ्त मदद हमें पहुंचा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वॉइस हेल्थ टेक्नोलॉजी आधुनिक तकनीकों से मिलकर भविष्य में स्वास्थ्य को और ज्यादा सुलभ और आसान और सस्ता बना सकती है। श्रोताओं, इसी के साथ आज के स्वास्थ्य दर्पण
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

पूरा ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमित गंगेले के स्वर में गंगेली

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। पहले सुनिए राजेश श्रीवास्तव के स्वर में गजल।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

गीत था फिल्म सत्य पे सत्ता से, और जिसकी भी आवाज थी आशा भोसले, बलराज कौर की, गीतकार थे गुलशन बावड़ा, संगीत था डी बर्मन का।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हमारी इसी सभा में आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आपकी पसंदीदा गीतों पर आधारित दोपहर 2:30 पर। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनडीए सरकार को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, तकनीक विशेषज्ञ, नीति निर्माता, कानून और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: मुझे इस बात का गर्व है कि आज दिन भर की कार्यशाला में आप सब वो मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा संकेत में है लेकिन ये बता भी दिया कि लापरवाही करोगे तो वसूली भी आपके विभाग से होगी। इसलिए केवल कहने सुनने की कथा कहानी की जगह नहीं है, ये जवाबदारी की जगह भी जो भविष्य में हमको अपने उस व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध कर रही जिसके हकदार हम हैं।
0: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य योग आयोग और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में देश भर से आए योग साधकों, योगाचार्यों, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर योग आयोग अध्यक्ष मध्य प्रदेश और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ की ओर से योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले योगाचार्यों, प्रशिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने की अपील की है। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में आज तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी श्रद्धालुजन नदी सरोवरों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जा रही है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने भोपाल ग्वालियर संभाग में अगले दो दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। वहीं आगरमालवा, राजगढ़ और सीहोर जिलों में तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय टर्फ लाइन और प्री मॉनसूनी सिस्टम के प्रभाव से अगले चार दिनों तक प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज आंधी का दौर बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अपनी सामान्य गति से थोड़ा पीछे चल रहा है लेकिन आगामी तीन से चार दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत संवाद करने ई स्कूटर से भोपाल के भीमनगर पहुंचे। यहां उन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली

अभी छात्रा चांदनी विश्वकर्मा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का एक माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गया है। आज से जबलपुर मुख्य पीठ सहित इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में नियमित न्यायिक कार्य शुरू हो गए हैं। विश्व रक्तदाता दिवस पर नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजार

0: करों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
4: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से

0: विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
1: उड़ीसा में तीन दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा अरिसा पिठा मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिनभर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन साथियों की। महादेव घाट अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला जो

रियांश ठाकुर राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जास्मीन प्रयागराज भट्ट बड़वाह से, प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म कुदरत का गीत, जिसके लिए आवाज है परवीन सुल्ताना की, गीतकार है मजरू और संगीत है आरडी बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता, भावना, प्राची नीमा, कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी। इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है गुड्डी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज है वाणी जयराम की, गीतकार है गुलजार और संगीत है वसंत देसाई का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये साथी हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र

श्रीमती पंचोलिया, औरंगाबाद से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू जाजोरिया। इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साहेब बीबी और गुलाम का ये गीत, जिसकी भी आवाज है आशा भोसले की, गीतकार है शकील बदायनी और संगीत है हेमंत कुमार का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अगली फरमाइश है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म से जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का, और इसको सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, भाटापारा दतरंगी, छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, महाराष्ट्र जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, इन सभी श्रोता ने साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म दिल अपना प्रीत पराई का ये प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे नंदा बोड़खे हनुमान सारिका सुरेखा सोनम बोड़खे इंदौर से लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन तानिया सागर से तिलक राणा मीना राणा मोनिका नुपुर ऋषिका रॉबिन राणा इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है मेरे सनम इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज है आशा भोसले की गीतकार हैं मजरूर सुल्तानपुरी और संगीत है ओपी नैयर का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है उज्जैन से विनोद मूणत नेहा जैन दीपक मयंक मूणत चेतन नाहटा दिलीप सिंह परिवार दीक्षा कुश मूणत पवार और इंदौर से हैं अनिल बामनिया प्रमीला बामनिया नंदनी मुस्कान नीलम सावन कृष्ण कुमार रितक कुणाल केतन बामनिया और ये हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जैतंग बिरक मीका।

पिरन आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म चमेली का गीत, जिसके लिए आवाज है सुनिधि चौहान की ही, और गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीत है संदेश शांडिल का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: बावनवां जी सेवन शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो गया है। ये सम्मेलन ऐसे समय में शुरू हुआ है जब अमेरिका और ईरान ने 107 दिनों से जारी संघर्ष की समाप्ति के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्ता शिक्षा, स्वच्छ शहर और सार्वजनिक सेवाओं पर आधारित ध्यान केंद्रित किया है। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में महोत्सव की औपचारिक शुरूआत होगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से शुरू होगा। ज्येष्ठ अधिक मास के अंतिम दिन आज सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ महासंयोग के अवसर पर उज्जैन की पावन शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दान, तर्पण और पूजा अर्चना की। और श्रीलंका ए के खिलाफ भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर और 2 गेंद में 265 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी 21 रन बनाकर आउट हुए। भारत की तरफ से सूर्यांश शिडगे ने 72 रन की पारी खेली। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। 5:33 और शाम 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6 बजे सुनिए एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर सुनेंगे कार्यक्रम आजकल। 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन।

रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति ये कार्यक्रम। रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:30 पर होगा कार्यक्रम राग रजनी। ये कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रुचिरा काले का राग केदार में ख्याल गायन।

मीडियम वेव 444 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

0: साथियों, स्वागत है युवाओं के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ सौम्य शर्मा और मेरा साथ दे रही हैं
1: संस्कृति पाठक। तो साथियों, स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में होगा खास कार्यक्रम सवाल हमारे जवाब आपके, अंक 124,
1: जिसमें और साथ ही होगी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं और हम आपके मनोरंजन के लिए सुनवाएंगे गीत। और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं विशेष काव्य पाठ अदिति अग्रवाल द्वारा रचित।
0: तो शुरू करते हैं साथियों हमारा आज का कार्यक्रम। साथियों, जरा कल्पना कीजिए घर का एक कोना जहां एक बुजुर्ग चुपचाप बैठे हैं। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वे उदास हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं।
1: मित्रों, कई बार चोट शरीर पर नहीं दिल पर लगती है, और जब ये चोट अपने ही लोगों से मिले तो उसका दर्द और भी गहरा हो जाता है।
0: हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे समाज और परिवार दोनों से जुड़ा है। विषय है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यानी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की, जिसे हर साल 15 जून को मनाया जाता है।
1: साथियों, हमारे बुजुर्ग हमारे

0: परिवार की नींव होते हैं। उनके अनुभव, संस्कार और जीवन के संघर्ष हमें सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कई बार वही बुजुर्ग उपेक्षा, अपमान और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं।
1: बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। उन्हें अपमानित करना, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करना, उनकी जरूरतों को अनदेखा करना, आर्थिक शोषण करना या उन्हें अकेला छोड़ देना भी दुर्व्यवहार के ही रूप हैं।
0: साथियों, हमें याद रखना चाहिए कि किसी तरह बचपन में उन्होंने हमारा साथ दिया था, किस तरह उन्होंने बचपन में हमारा साथ दिया था, उसी तरह हम बुढ़ापे में उनके साथ रहें। उनके सहारे की आवश्यकता उन्हें बुढ़ापे में होती है।
1: हम युवाओं की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने दादा दादी, नाना नानी या आसपास के बुजुर्गों के साथ समय बिताकर, उनकी बातें सुनकर और उनका सम्मान करके उनके जीवन में खुशी ला सकते हैं।
0: साथियों, कभी कभी एक मुस्कान, कुछ मिनट की बातचीत या छोटी सी मदद भी उनके लिए बहुत मायने रखती है। एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है।
1: और यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारा सम्मान करें, तो हमें भी अपने बुजुर्गों के प्रति आदर और संवेदनशीलता दिखानी होगी।
0: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि अपने घर और समाज के प्रत्येक बुजुर्ग को सम्मान, सुरक्षा और प्रेम देंगे।
1: उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे।
0: साथियों, ये तो थी एक चर्चा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर। आइए मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: साथियों, जैसा कि आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है, तो इस अवसर पर हम बात करेंगे बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल की।
0: साथियों, बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं।
1: उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, ज्ञान और संघर्षों से परिवार एवं समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: उनका सम्मान करना और उनकी उचित देखभाल करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है।
1: बुजुर्ग अपने अनुभवों के माध्यम से हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे परिवार के मूल्यों, संस्कारों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
0: उनके जीवन के अनुभव युवा पीढ़ी को कठिन परिस्थिति का सामना करने की प्रेरणा देते हैं।
1: बुजुर्गों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। उनके प्रति आदर भाव रखने से परिवार में प्रेम, एकता और सद्भाव बना रहता है।
0: जो समाज अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, वह नैतिक रूप से अधिक सुदृढ़ और विकसित होता है।
1: बुजुर्गों की देखभाल करने से कुछ उपाय हम बताते हैं आपको, जैसे कि शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए।
0: साथियों, हमें उनके साथ समय बिताकर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनके विचारों और अनुभवों का सम्मान करना चाहिए।
1: उन्हें अकेलापन महसूस न होने दें और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें।
0: बुजुर्ग परिवार की नींव होते हैं, वे बच्चों में नैतिक मूल्य, परंपराएं और संस्कृति की शिक्षा भी देते हैं।
1: उनके अनुभव परिवार के सदस्यों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में सही दिशा प्रदान करते हैं। उनके सानिध्य से परिवार में प्रेम, एकता और आपसी समझ बढ़ती है।
0: बुजुर्ग समाज की अमूल्य संपत्ति हैं। उनके अनुभव और आशीर्वाद हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं, इसके लिए हमें उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। तो साथियों, ये तो थी चर्चा बुजुर्ग का सम्मान और देखभाल पर। अब हमें मनोरंजन की ओर रुख करना चाहिए, क्यों सौम्या?
1: बिल्कुल, आइए साथियों सुनवाते हैं आयुष्मान खुराना की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म विक्की टोनर से ये गीत, जिसमें आवाज थी आयुष्मान खुराना की।
1: गीतकार थे आयुष्मान खुराना व रोचक कोहली, संगीतकार थे रोचक कोहली।
0: साथियों, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम आपको ले चलते हैं काव्य पाठ की ओर, जो कि होगा अदिति अग्रवाल द्वारा रचित। तो आइए सुनते हैं अदिति अग्रवाल द्वारा रचित काव्य पाठ।
2: मेरी पहली कविता का शीर्षक है बुंदेली माटी। धन्य।

है। धन्य धन्य है धरा हमारी, धन्य हमारी वाणी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कविता है मेरी राधा के मोहन। करती है प्रेम गरे मोहने से राधिका, तो राधिका को मोहने का साथ सदा चाहिए। करती है प्रेम गरे मोहने से राधिका, तो राधिका को मोहने का साथ सदा चाहिए। द्वारिका जो जाना चाहे कृष्ण कर्तव्य को, सीता जैसे राधिका को साथ सदा चाहिए। सीता जैसे राधिका को साथ सदा चाहिए। रख

सीख लेना चाहिए। मेरी अगली कविता है, प्रेम जब एक तरफा होता है तो उसको खोने से क्या क्या वियोग सहना पड़ता है। शीर्षक है मेरा, प्रेम के मोती। एक

जा सकता है। मेरी अगली कविता है प्रकृति। हरियाली की चादर ओढ़े, हरियाली की चादर ओढ़े, धरती लगे महान, पर्वत नदी झरने सजते, पाकर नया सम्मान। कलकल करती नदी बहती, कलकल करती नदियां बहती, गाती मधुर तराने, शीतल पवन सुगंध बिखेरे, मन को लगे सुहाने। रंग बिरंगे फूल खिले हैं जब महकी सारी हवाएं, प्रकृति माँ का रूप निराला, प्रकृति माँ का रूप निराला, देती सुख सुविधाएं। सूरज चांद तारे मिलकर जग को राह दिखाते, प्रकृति के इस सुंदर धन को हम सब मिलकर बचाते, हम सब मिल बचाते। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मुक्तक सुनाऊंगी कि हृदय में खुशनुमा यादों की एक रौनक सजाई है, हृदय में खुशनुमा यादों की एक रौनक सजाई है, रहेंगे साथ में दोनों जवानी ये बनाई है, तुम्हारे रूठ जाने से जुदा होंगे नहीं सुन लो, तुम्हारे रूठ जाने से जुदा होंगे नहीं सुन लो, अगर तुम जान लेते जिंदगी अनुपम बनाई है, अगर तुम जान लेते जिंदगी अनुपम बनाई है। मेरी अगली कविता

0: हर जड़ चेतन से, हर पशु पक्षी आदि पुरुष से, क्या मेरा पता लगाओगे? मैं सीता बन जाऊंगी, तुम राम मेरे बन पाओगे? हर क्षण क्षण में, हर कण कण में, हर सांस शब्द और स्वर में, ध्यान तुम्हारा ही मैं करूंगी, क्या मेरी खबर लेने को हनुमान को ही पहुंचाओगे? मैं सीता बन जाऊंगी, तुम राम मेरे बन पाओगे? मैं सीता बन जाऊंगी, तुम राम मेरे बन पाओगे? जब रावण जैसा दानव होगा, जब रावण जैसा दानव होगा, हर दिशा जल ही जल होगा, जब आगे कोई पथ ना होगा, तुम सेतु स्वयं बनाओगे? मैं सीता बन जाऊंगी, तुम राम मेरे बन पाओगे? मैं सीता बन जाऊंगी, तुम राम मेरे बन पाओगे? जब जन जन तुम पर मोहित होंगे, राजपाट विश्राम भी होगा, लेकिन सीता की चाहत में क्या मीलों चलकर आओगे? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे बन पाओगे? मैं सीता बन जाऊंगी, तुम राम मेरे बन पाओगे? मेरी अगली कविता है पिता, तो सुनिएगा। कोई हाल पूछे तो सब अच्छा कह देते हैं, कोई हाल पूछे तो सब अच्छा कह देते हैं, सबके दुख सुनकर मुस्कुराकर गले लगा लेते हैं। अपना सामान आज भी संदूक में रखते हैं, थोड़ा पुराने हैं खटे ताले पर भी भरोसा रखते हैं। तजुर्बा इतना कि हमारी चाल देख हमारी राह जान लेते हैं, और कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, हमारे भाव देख हालात जान लेते हैं। हमारी गलतियों पर भी कभी साथ नहीं छोड़ते, हाथों में हाथ उनका हो तो हाथ नहीं छोड़ते। बेशक लिबास नहीं बदलते पर इतिहास बदल देते हैं, बेशक लिबास नहीं बदलते पर इतिहास बदल देते हैं। पिता वो हैं जो हमारी जरूरतों के हिसाब से किरदार बदल लेते हैं, पिता वो हैं जो हमारी जरूरतों के हिसाब से किरदार बदल लेते हैं।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे अदिति अग्रवाल द्वारा रचित काव्य पाठ,
2: और अब वक्त है आज के हमारे खास कार्यक्रम सवाल हमारे जवाब आपके, अंक 124 के। तो साथियों, हम बता देते हैं आपको पिछले सोमवार को पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर।
1: साथियों, इस कार्यक्रम में हमारे साथियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अपने उत्तर हमें ईमेल के माध्यम से भेजे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं अपने प्रश्न और उनके सही सही उत्तर। साथियों, हमारा पहला सवाल था, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था, और इसका उत्तर है कैप कैमोरिन।
2: हमारा दूसरा प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, जिसका उत्तर है लोथल।
1: हमारा तीसरा सवाल था, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, और इसका उत्तर है खजुराहो मध्य प्रदेश में।
2: हमारा चौथा प्रश्न था, लेक सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है, जिसका उत्तर है उदयपुर।
1: हमारा पांचवा सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, और इसका उत्तर है बंगलुरु।
2: हमारा छठवां प्रश्न था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, जिसका उत्तर है आर्यभट्ट।
1: हमारा सातवां सवाल था, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और इसका उत्तर है तमिलनाडु।
2: हमारा आठवां प्रश्न था, शून्यवाद नामक सिद्धांत किसने दिया था, जिसका उत्तर है नागार्जुन ने।
1: हमारा नवा सवाल था, हाल ही में आयोजित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है, और इसका उत्तर है आर प्रज्ञानंद ने।
2: हमारा दसवां प्रश्न था, वीजा ने किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिसका उत्तर है शाहरुख खान को।
1: तो साथियों, जैसा कि हम आपको बता दें, हमारे श्रोताओं ने हमें उत्तर अपने उत्तर हमें ईमेल के माध्यम से भेजे हैं, और एक से लेके सात सही जवाब वाले पत्र हमें एक भी प्राप्त नहीं हुए हैं। और अब हम आपको बता देते हैं अपने उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने 10 में से 8 सवालों के सही जवाब दिए हैं। और हमारे वे श्रोता हैं, पलेरा जिला टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा।
2: अगला पत्र मिला है ग्राम ममना सरीला हमीरपुर से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का।
1: अगला पत्र हमें मिला है पथरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से, चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल।
2: पत्र है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या गोस्वामी।
1: अब हम आपको बता देते हैं अपने श्रोताओं के नाम जिन्होंने 10 में से 9 सवालों के सही जवाब दिए हैं। हमारे वे श्रोता हैं, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन एले, नवदीप एले।
2: नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत चीर, पुष्पांजलि वर्मा।
1: अब हम आपको बता देते हैं उन श्रोताओं के नाम।

0: जिन्होंने 10 में से 10 सवालों के सही जवाब दिए हैं और हमारे वे श्रोता विजेता बनने की सूची में हैं। हमारे ऐसे श्रोता हैं पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर, नयन और सुमांशु पांडे।
1: कोयलारी छत्तीसगढ़ से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पुनेन्द्र, साहिल चंद्राकर।
0: अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा।
1: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता।
0: धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदुलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीत कुमारी क्रिस्टी पटवा का।
1: खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रदीप कुमार।
0: ग्राम पीपरलो सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, शिवांश वर्मा।
1: पत्र है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े का।
0: अगला पत्र में मिला है टोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: ग्राम बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश और मिथिलेश वर्मा।
0: अगला पत्र में मिला है वोडसेरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विभूति साहू का।
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखीलाल वर्मा।
0: अगला पत्र में मिला है रिंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा।
1: पत्र है बंगला मटिया मालोद छत्तीसगढ़ से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबका, लीना, आशुतोष अंगारे का।
0: अगला पत्र में मिला है ग्राम परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोजनी, तुषारणी, कुमेंद्र मसिया का। तो साथियों, ये तो थे हमारे उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने 10 में से 10 सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो स्वामी, आज विजेता का नाम बता दें।
1: बिल्कुल साथियों, हमारे आज के लकी विजेता का नाम है बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू।
0: तो प्रमोद कुमार साहू जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने विजेता की पसंद का गीत सुनते हैं, है ना सौम्या?
1: बिल्कुल। तो साथियों, हम आपको गीत सुनवाएंगे, आप सभी तैयार रहिएगा। गीत के बाद हम आपको बताएंगे सवाल हमारे, जवाब आपके, अंक 125 के प्रश्न। तो आइए सुनवाते हैं आपको हमारे विजेता की पसंद का ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म जीनियस से ये गीत, जिसमें आवाज थी अरिजीत सिंह की।
1: गीतकार थे कुमार और संगीतकार थे हिमेश रेशमिया।
0: साथियों, उम्मीद है कि आप सभी कॉपी और पेन निकाल कर बैठे होंगे। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं सवाल हमारे, जवाब आपके, अंक 125 के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, जून 2026 में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
1: साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी?
0: साथियों, हमारा तीसरा प्रश्न है, विज का खंभा, विज या स्तंभ कहाँ स्थित है?
1: हमारा चौथा प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है?
0: साथियों, हमारा पांचवा प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है?
1: इसे एक बार फिर सुनिए, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है?
0: साथियों, हमारा छठा प्रश्न है, भारत का महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
1: इसे एक बार फिर सुनिए, भारत का महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
0: हमारा सातवां प्रश्न है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
1: भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
0: साथियों, हमारा आठवां प्रश्न है, पवन द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है?
1: इसे एक बार फिर सुनिए, पवन द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है?
0: हमारा नवा प्रश्न है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
1: दसवां प्रश्न है, बुंदेलखंड की लोक नाट्य विधा का नाम क्या है?
0: साथियों, इसे एक बार फिर सुनिए, बुंदेलखंड की लोक नाट्य विधा का नाम क्या है? साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, सवाल हमारे, जवाब आपके, अंक

0: 125 युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 471001।
1: साथियों, आप हमें इन पत्रों इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है youthchhatarpur@gmail.com।
0: इसके लिए हमें आपके पत्र 22 जून सोमवार की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए ताकि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें।
1: साथियों, ये तो था आज का हमारा कार्यक्रम सवाल हमारे जवाब आपके अंक 125। और अब रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चर्चा धीरे-धीरे।
1: साथियों, अब वक्त है एक और चर्चा का, जिसका विषय है बेटी शिक्षा का महत्व।
0: साथियों, बेटी शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास का आधार है।
1: शिक्षित बेटी न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।
0: साथियों, कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।
1: इसलिए बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।
0: शिक्षित बेटी एक अच्छी माँ, पत्नी और परिवार की जिम्मेदार सदस्य बनती है।
1: वह अपने बच्चों को उचित संस्कार और शिक्षा प्रदान करती है, जिससे पूरे परिवार का विकास होता है।
0: शिक्षा प्राप्त करके बेटियां आत्मनिर्भर बनती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करती हैं।
1: इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तथा वे परिवार की आय बढ़ाने में भी सहायता करती हैं।
0: बेटियों की शिक्षा लैंगिक भेदभाव को कम करने में सहायक होती है।
1: शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और समाज में समानता स्थापित करने में योगदान देती हैं।
0: साथियों, शिक्षा के माध्यम से बेटियां अपने अधिकारों और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करती हैं।
1: इससे बाल विवाह, दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों को रोकने में सहायता मिलती है।
0: बेटी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथियों कुछ उपाय हैं, जैसे कि समाज में बेटी शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करनी चाहिए।
1: सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए।
0: माता पिता को बेटियों की शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो साथियों, ये तो थी चर्चा बेटी शिक्षा का महत्व पर। अब हम आपको दे देते हैं आज की हमारी रोजगार सूचना। आज की रोजगार सूचना में SSC सीरियल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है ग्रुप बी और सी के लिए विभिन्न पद।
1: पदों की संख्या है 12,225। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
0: आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 21 मई 2026 थी और इसकी अंतिम तिथि है 22 जून 2026। शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएशन की डिग्री।
1: अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: तो साथियों, ये तो थी आज की हमारी रोजगार सूचना। तो मुझे लगता है सौम्या, जाने से पहले हमें अपने श्रोताओं को एक बार और सवाल हमारे जवाब आपके अंक 125 के प्रश्न बता देने चाहिए।
1: बिल्कुल साथियों, एक बार फिर हम आपको बताते हैं सवाल हमारे जवाब आपके अंक 125 के प्रश्न।
0: हमारा पहला प्रश्न था, जून 2026 में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी।
0: हमारा तीसरा सवाल है, विज का खम्बा, विज या स्तंभ कहाँ स्थित है।
1: हमारा चौथा प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए भारत का

0: मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है?
1: हमारा चौथा प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? हमारा पांचवा प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है?
0: इसे एक बार फिर सुनिए, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है?
1: साथियों, हमारा छठवां प्रश्न है, भारत का महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
0: सातवां प्रश्न है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
1: भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
0: आठवां प्रश्न है, पवन द्वारा निर्मित अर्धचंद्रकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है?
1: हमारा नवा प्रश्न है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
0: हमारा दसवां प्रश्न है, बुंदेलखंड की लोक नाट्य विधा का नाम क्या है?
1: साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, सवाल हमारे जवाब आपके, अंक 125 युववाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 471001।
0: और आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है youthchhatarpur@gmail.com।
1: इसके लिए हमें आपके पत्र सोमवार 22 जून 2026 की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें।
0: तो साथियों, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, इसलिए बता देते हैं आपको कल के कार्यक्रम।
1: साथियों, कल आप सुनेंगे भेंट वार्ता, परीक्षा के समय में विद्यार्थी किस तरह से संतुलन बनाए विषय पर तुलसीदास प्रजापति से बातचीत,
0: साथियों की महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं और रोजगार सूचना। इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सौम्या शर्मा
1: और संस्कृति पाठक को नमस्कार।

अभी युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गीत सुना जो हमने लिया था फिल्म तेरे मेरे फेरे से। इस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया था शिवी आर कश्यप ने।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज में आप सुन रहे थे दमादम फिल्म का गीत, जिसे लिखा था शब्बीर अहमद ने और संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने।
1: Life is so beautiful.

0: I want back those years.
1: अभी आपने चितकबरे फिल्म का गीत सुना. इसे आवाज दी थी शान पामेला जैन और आर्या बेकिंग ने. शब्द रचना थी राजेश और सुप्रतिम की. संगीत दिया था अक्षय बफीला ने. इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है. मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है.

मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। 6:30 पर लोकधारा के कलाकार होंगे गोविंद दास कुशवाहा, इनसे आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीत। 7:20 पर ग्रामीण भाई सुने ग्राम सभा कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रमतुला। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही सुनिए डॉक्टर सिद्धार्थ नामदेव से उनकी वार्ता, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, किसानों के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य सुरक्षा कवच।

रात 8 बजे आप सुनेंगे भोपाल से अनूप प्रसारित विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति। 8:35 पर सुनिए फिल्म संगीत और रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 7:20 पर सुनिए बुंदेली सुगंध के अंतर्गत डॉ जवाहरलाल द्विवेदी से बुंदेली काव्य पाठ। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

8:30 पर आप सुनेंगे बुंदेली कवि गोष्ठी। कार्यक्रम होगा रसावतरण। प्रतिभागी कवि होंगे ओम प्रकाश तिवारी, द्वारका प्रसाद शुक्ला, प्रभु दयाल श्रीवास्तव और सियाराम नायक। 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें कलाकार होंगे जगदीश कुमार जोशी। 9:30 पर सुनिए एक ही गीतकार क्रम में इरशाद कामिल के लिखे कुछ फिल्मी गीत। 10:05 पर प्रसारण होगा पत्रिका कार्यक्रम का। पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। इसमें आप

सुनेंगे संदीप कुमार अहिरवार से उनकी वार्ता महान वैज्ञानिक टिम बर्नसेली और 10:35 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कल हमारी दूसरी सभा में युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा 5 बजे। इसमें आप सुनेंगे तुलसीराम प्रजापति से ली गई भेंटवार्ता, परीक्षा के समय में विद्यार्थी किस तरह से संतुलन बनाएं। फिल्म संगीत सुनिए 5:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा शाम 6 बजे। 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम में कलाकार होंगी उमा देवी। ग्रामीण बहनें सुनेंगी घरनी कार्यक्रम 7:20 पर। इसमें आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही सुनिए एक भेंटवार्ता प्रियांशु चौबे से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत, कार्बनिक पदार्थ का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव। रात 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात 10 बजे सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने विषय पर विभागीय परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा की तरह महत्वपूर्ण है डेटा की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि आज डेटा सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला बुधवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत इस श्रृंखला का पहला वनडे जीतकर 1-0 से आगे है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं।

0: हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
1: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोहले जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी, 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा आ गया है, बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
0: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्य

0: लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
1: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे, सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
0: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
1: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
0: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
1: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
0: तो फिर?
1: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
1: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
1: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहाड़ा।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
1: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
1: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
1: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है
2: मास्टर जी।
1: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
1: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
1: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा,

0: उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ ये दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
1: अपू,
2: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
1: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
2: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
2: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
2: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
3: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
3: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ बता, डरना मत।
3: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ
0: वो कांपते हुए बोला,
3: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
3: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर

0: कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा। जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो।
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
0: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे।
1: क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी नोटिस है।
1: लो।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
0: 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
0: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों एक एक करके आओ,
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
0: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ, अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
0: पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना।
0: मां

0: दांतों तले उंगली दबाई।
1: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बड़े कंचे हैं, है ना?
1: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
2: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
1: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
4: मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोकधारा कार्यक्रम। आइए इसके आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं गोविंद दास कुशवाहा से गणेश वंदना।
5: पहले कोई विदेश से

0: अभी आपने गोविंद दास कुशवाहा के स्वर में गणेश वंदना सुनी।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: और लीजिए अब सुनिए गोविंद दास कुशवाहा से ये हास्य गीत।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
7: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: और आइए अब सुनते हैं गोविंद दास कुशवाहा के स्वर में देवी की।

0: अभी आपने देवी गीत सुना।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का

0: का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
1: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
0: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
1: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: और आइए अब सुनते हैं गोविंद दास कुशवाहा के स्वर में सैरों।

0: गोविंद दास कुशवाहा के स्वर में अभी आपने सैरो सुना।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं गोविंद दास कुशवाहा से बिलवारी।

0: अभी आपने बिलवारी सुनी।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: और लीजिए लोकधारा कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं गोविंद दास कुशवाहा से धूनी भजन।

0: गोविंद दास कुशवाहा के स्वर में आपने सुना धूनी भजन। ढोलक पर ज्ञानी दास कोरी, बेंजो पर अरुण कुमार नामदेव और हारमोनियम पर सतीश कुमार पांडे ने संगत की थी। इसी के साथ लोकधारा कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: लीजिए हम आपको दे दें गुमशुदा के संबंध में सूचना। ये गुमशुदा हैं श्रीमती नेहा, इनके पति का नाम है सुरेश कुशवाहा, रहने वाली हैं पहाड़गांव, थाना कैलिया, जनपद जालौन। ये दिनांक 19 मई 2026 से ग्राम पहाड़गांव से लापता हैं। आयु है 28 वर्ष, रंग सांवला, चेहरा गोल, दाहिने हाथ की कोहनी में काला निशान है, इन्होंने साड़ी ब्लाउज पहना हुआ है, बाल काले हैं। यदि किसी को इनके संबंध में कोई सूचना मिलती है तो वो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। पता है सुरेश कुशवाहा तने स्वर्गीय मोहनलाल कुशवाहा, निवासी पहाड़गांव, थाना कैलिया, जनपद जालौन। आपको एक और गुमशुदा के संबंध में सूचना दे दें। ये है पूजा देवी, जो दिनांक 15 मई 2026 को 11:30 से केशव देव तिवारी महाविद्यालय के पास ग्राम मोहन, थाना गोहन से लापता है। इनकी आयु है 20 वर्ष, शरीर की बनावट सामान्य है, ऊंचाई सामान्य, चेहरा सामान्य, गले पर बीच में काले रंग का तिल इनके पहचान का चिन्ह है। इन्होंने काले रंग की कुर्ती, सफेद रंग की सलवार, लाल दुपट्टा

0: और पैरों में सफेद रंग के जूते पहने हुए हैं। यदि किसी को इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वो कृपया इस पते और मोबाइल नंबर पर सूचित करें। रामबाबू पुत्र बल्दू शाक्यवार, निवासी ग्राम सिंगरौली, थाना गोहन, जिला जालौन। मोबाइल नंबर है 7307973919 और 6390741467। सूचना समाप्त हुई।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: जे कॉलेज का टाइम याद है?
5: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
4: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
5: कहाँ से पता चलेगा?
4: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
4: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्लोवाकिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। श्री मोदी ने कहा, एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीमाओं की सुरक्षा की तरह डेटा की सुरक्षा को बताया महत्वपूर्ण। कहा, प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना। नगरीय निकाय और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम संशोधित। अंतिम सूची 27 जुलाई को होगी जारी। और मौसम विभाग का 30 से ज्यादा जिलों में हवा बारिश का अलर्ट। 18 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे ताकि उनके उद्योगों, स्टार्टअप्स और व्यापारियों को लाभ मिल सके। श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुक्त व्यापार समझौते का सफल समापन भारत यूरोपीय संघ के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा और भारत तथा स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के नए अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भागीदारी में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नवाचार आधारित सहयोग में नई संभावनाएं खोलेगा।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए

0: एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज के सबसे मूल्यवान संपत्ति डेटा है। डिजिटल सुरक्षा समय की मांग है। उन्होंने कहा कि डेटा की सुरक्षा राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल देश अपितु पूरी दुनिया में साइबर तकनीक और उससे जुड़ी चुनौतियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने पर आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान डॉ. यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के दौरान भी आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे साधनों के उपयोग से सुरक्षा चुनौतियों का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। श्री चौहान ने कहा,
2: आज हमारे सबके लिए सच में डेटा सुरक्षा ये महत्वपूर्ण इतना हो गया कि सीमा की सुरक्षा से भी बढ़कर है। सच में यूपीआई का लोहा दुनिया ने माना है और आज के इस अवसर पर जब डिजिटल माध्यम से लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो सुरक्षा की जवाबदारी भी उतनी ज्यादा है और ये तभी नागरिकों का विश्वास इस व्यवस्था से बनेगा।
1: इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते साइबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श करना था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज इंदौर के सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान में महिला और बाल कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। श्रीमती देवी ने यहां कहा कि इंदौर स्थित ये संस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संस्थान प्रशिक्षण के साथ साथ शोध और मूल्यांकन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 25 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 2 जुलाई तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होना था। सोमवती अमावस्या, सूर्य संक्रांति और अमृत सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग ने आज पूरे प्रदेश भर को आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग दिया। उज्जैन की शिप्रा से लेकर नर्मदा तट, चित्रकूट की मंदाकिनी और बांदकपुर के जागेश्वर धाम तक लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों पर सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। उज्जैन में आज तड़के ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। नर्मदापुरम में नर्मदा तट पर 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। जबलपुर में ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, लमीटा घाट और अन्य नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने मां नर्मदा में स्नान कर वट वृक्ष का पूजन किया और पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में करीब 1,00,000 श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार जोर पकड़ रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। राजधानी भोपाल में आज दोपहर बाद से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर संभाग में अगले 2 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। शहडोल में मिनी ब्राजील के नाम से चर्चित विचारपुर स्थित जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल मैदान में मध्य प्रदेश फुटबॉल अकादमी का 3 दिवसीय मेगा चयन ट्रायल आज समाप्त हो गया। इस ट्रायल में 8 से 18 साल तक के 445 खिलाड़ी शामिल हुए। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के मुख्य कोच स्वप्न कुमार विश्वास ने विचारपुर के खिलाड़ियों के खेल और उनके जुनून को देखकर खुशी जाहिर की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर में राष्ट्रीय

राजमार्ग 30 पर भरगी थाना क्षेत्र में आज दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार पिता और उसके 13 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण और वाक बाधित व्यक्तियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। नर्मदापुरम में सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। शेड्यूल में 110 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। कटनी में ग्रामीण नागरिकों को नियमित पर्याप्त और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनपद स्तरीय तकनीकी अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला जेल खंडवा में सप्ताह भर चलने वाले योग शिविर का शुभारंभ किया गया। शहडोल जिले के जयसिंह नगर में पदस्थ एक पटवारी ने तहसीलदार पर पैसे मांगने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर।

झील खंडवा में सप्ताह भर चलने वाले योग शिविर का शुभारंभ किया गया। शहडोल जिले के जयसिंह नगर में पदस्थ एक पटवारी ने तहसीलदार पर पैसे मांगने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए, ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है ग्राम सभा कार्यक्रम।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनबे वाले सवई पंचन खां बिरजू भैया की राम राम। भैया बहन हरो, आज है 15 जून और आज के दिना हम अपन सब विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाऊ थे। इको मनावे को जो ही उद्देश्य है कि बुजुर्गों के संगे होवे वाले दुर्व्यवहार शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आर्थिक के खिलाफ आवाज उठावो और समाज में उनके अधिकारों का सम्मान सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलावो है। भैया बहनरो, अपन सब खां अपने घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके संगे कोनो भी प्रकार को दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं करने हैं हमेशा, बल्कि उनको आदर सम्मान और सेवा भाव रखने हैं। तो भैया अपन सब का ऐसा करने हैं, संगे संगे हमेशा स्वस्थ रहवे के लाने, पर्यावरण का प्रदूषित होवे से बचावे के लाने, ई के लाने अपन सब का अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण जरूर सोई करने हैं, जिसे अपन का हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और पर्यावरण प्रदूषित होवे से बच सके। तो भैया अपन का वृक्षारोपण जरूर करने हैं। हम अपन से आगे भी चर्चा कर भी ऊ के पहला थोड़ा सा रुकत है।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: भैया बहनों, अपन सब देख रहे हैं कि आए दिन अपने बाल गोपाल कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, तो कुपोषण से बचाव के लाने अपन सबका संतुलित आहार देने हैं जोन पोषक तत्व से भरपूर हो, जिससे बच्चा हमेशा सीमित मात्रा में भरपूर तत्व मिल सके और वे हमेशा स्वस्थ रहें। यानी अपनो मतलब जो ये कि अपने जोन बाल गोपाल हैं उन्हें संतुलित आहार देने और जितने पोषक तत्व से भरपूर है उन्हें जरूर देने हैं। और भैया अब हम अपने सबका सुनवा रहे हैं एक वार्ता। प्रधानमंत्री अन्नदाता

0: आय संरक्षण अभियान, किसानों के लिए उचित एवं लाभकारी मूल सुरक्षा कवच। वार्ताकार है डॉक्टर सिद्धार्थ नामदेव, सुने सभी जने।
1: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ नामदेव। किसान भाइयों, आज हम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा कि ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जो कि किसानों की आय को बढ़ाने एवं उनको उचित और लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी करोड़ों किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। लेकिन लंबे समय से किसानों के सामने एक बड़ी समस्या रही है कि जब उनकी फसल तैयार होकर बाजार में आती है तो कई बार उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। अक्सर देखा जाता था कि अच्छी पैदावार होने के बाद भी बाजार में फसल की आवक बढ़ जाती थी और कीमतें गिर जाती थी। किसान पूरे साल मेहनत करता था, बीज, खाद, सिंचाई और मजदूर पर खर्च करता था, लेकिन जब फसल बेचने का समय आता था तब उसे लागत के अनुरूप लाभ भी नहीं मिल पाता था। कई बार तो किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से कम दाम पर भी बेचनी पड़ती थी। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए वर्ष 2018 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM आशा योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित करना और सुनिश्चित करना था कि उनकी फसल का उचित एवं लाभकारी मूल्य उन्हें मिल सके। PM आशा केवल एक खरीद योजना ही नहीं बल्कि यह किसानों को मूल्य सुरक्षा देने की एक व्यापक व्यवस्था है। इसी कारण इसके अंतर्गत 3 अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जो कि मूल्य समर्थन योजना, मूल्य अंतर भुगतान योजना एवं निजी खरीद एवं भंडारण पायलट योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाना तथा बाजार की कीमतों को गिरने की स्थिति में उनकी आय की सुरक्षा करना है। दूसरी शब्दों में कहें तो PM आशा किसानों के लिए एक मूल्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। श्रोताओं को ये समझना चाहिए कि केवल MSP घोषित कर देना ही पर्याप्त नहीं, जब तक किसान को वास्तव में MSP का लाभ न मिले तब तक उसकी आय सुरक्षित नहीं हो सकती। इसी उद्देश्य से PM आशा की शुरुआत की गई। अब यदि इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह योजना 3 प्रमुख व्यवस्थाओं पर आधारित है। पहली विशेषता, मूल्य समर्थन योजना। इस व्यवस्था के अंतर्गत जब बाजार में दलहन, तिलहन या खोपरा जैसी फसलों का मूल्य MSP से नीचे चला जाता है तब सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसियां किसानों से सीधे MSP पर फसल खरीदती हैं। उदाहरण के लिए यदि चना या सरसों का बाजार भाव MSP से कम है तो किसान अपनी उपज निर्धारित खरीद केंद्र पर बेच सकता है और MSP प्राप्त कर सकता है। इस योजना की दूसरी विशेषता है मूल्य अंतर भुगतान योजना। इस व्यवस्था में सरकार फसल की भौतिक खरीदी नहीं करती। यदि किसान अपनी फसल मंडी में MSP से कम मूल्य पर बेचता है तो MSP और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर सीधे किसान के बैंक खाते में जमा किया जाता है। इससे किसानों को मूल्य सुरक्षा मिलती है और सरकार को बड़े पैमाने पर भंडारण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इस योजना की तीसरी विशेषता है निजी खरीद एवं भंडारण पायलट योजना। इस व्यवस्था में सरकार अधिकृत निजी एजेंसियों को MSP पर उत्पाद खरीदने की अनुमति दे देती है। जब बाजार मूल्य MSP से नीचे चला जाता है तब निजी कंपनियां भी किसानों से MSP पर फसल खरीद सकती है। इससे खरीद व्यवस्था का दायरा बढ़ता है और किसानों को अधिक विकल्प मिलते हैं। और इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि MSP की सुरक्षा। यह योजना सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो। किसानों की आय की सुरक्षा, बाजार में मूल्य गिरने की स्थिति में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने का प्रयास किया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। इस योजना के तहत भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है जिससे पारदर्शिता बढ़ती है एवं बनी रहती है। केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी। यह योजना का सफल संचालन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नाफेड, FCI तथा अन्य एजेंसियां मिलकर साथ में कार्य करती हैं। दलहन और तिलहन उत्पादों को विशेष लाभ। योजना विशेष रूप से किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो चना, मसूर, उड़द, मूंग, तुअर, सरसों, सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों को उगाते हैं। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि मूल्य अंतर योग भुगतान योजना क्या है और यह सामान्य MSP खरीद व्यवस्था से किस प्रकार अलग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले हमें MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को समझना होगा। MSP वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों की फसल के लिए घोषित करती है ताकि किसानों को उनकी लागत और मेहनत का उचित प्रतिफल मिल सके। सामान्य MSP खरीद व्यवस्था में सरकार या उनकी एजेंसियां किसानों की फसल को सीधे खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि चने का MSP 5600 रुपए प्रति क्विंटल है और मंडी में भाव 5000 रुपए चल रहा है, तो सरकार किसान से 5600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उसका उत्पाद खरीद सकती है, लेकिन कई बार फसल की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण

0: खरीद, परिवहन और भंडारण की बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए मूल्य अंतर भुगतान योजना यानी PDPS लाई गई। इस योजना के अंतर्गत सरकार फसल नहीं खरीदती, किसान अपनी उपज मंडी में बेचता है। यदि मंडी का भाव MSP से कम है तो सीधे तौर पे वो अंतर सरकार किसान के खाते में जमा कर देती है। उदाहरण के तौर पे यदि MSP 6000 प्रति क्विंटल है और किसान ने अपनी उपज 5500 रुपए में बेची है तो 500 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर सरकार सीधे उस किसान के बैंक अकाउंट में जमा कर देगी। इस प्रकार सरकार फसल खरीदती है जबकि मूल्य का अंतर भी वो किसानों को देती है। दोनों का उद्देश्य किसान की आय की रक्षा करना है। अब सवाल आता है कि यदि कोई किसान अपनी तिलहन फसल मंडी में MSP से कम कीमत पर बेचता है तो क्या इस योजना के तहत जो अंतर की राशि है वो उसे कैसे प्राप्त होगी? तो अक्सर किसान भाई यही जानना चाहते हैं कि यदि मंडी में MSP से कम भाव मिलता है तो सरकार उनकी मदद किस प्रकार करेगी। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये योजना का मूल उद्देश्य किसानों को MSP का लाभ दिलाना है बिना फसल की भौतिक खरीदी करे बिना। अर्थात सरकार किसान की फसल अपने पास नहीं खरीदती बल्कि MSP और बाजार मूल्य के बीच का अंतर उसे दे देती है। इसके लिए किसानों को सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपना पंजीयन करना होगा। किसान को सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में अपनी फसल और भूमि का पंजीयन करना होगा। पंजीयन के दौरान किसान का आधार नंबर, बैंक खाता, भूमि विवरण और फसल संबंधी जानकारी दर्ज की जाती है। इसके बाद किसान अपनी फसल को अधिसूचित मंडी में बेचता है। मंडी में बिक्री होने पर उसकी पूरी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज कर ली जाती है, जैसे उसने कितनी फसल बेची और किस दाम पर उसने उस फसल को बेचा। अब संबंधित सरकारी एजेंसी MSP और किसान के बिक्री मूल्य की तुलना करती है। यदि बिक्री मूल्य MSP से कम है तो निर्धारित नियमों के अनुसार अंतर की राशि की गणना की जाती है और यह राशि किसी बिचौलिए या नगद भुगतान के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी किसानों के खातों में सीधे जमा कर दी जाती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और भुगतान में गड़बड़ी की संभावनाओं को हम कम कर सकते हैं। मैं किसान भाइयों को एक विशेष सलाह देना चाहूंगा कि वह समय पर पंजीयन अवश्य कराएं, बैंक खाता सक्रिय रखें, आधार और बैंक खातों को लिंक करें और मंडी में बिक्री की रसीद और दस्तावेजों को सुरक्षित रखें, क्योंकि यही रिकॉर्ड बाद में अंतर राशि के भुगतान का आधार बनते हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो इस योजना के तहत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा मुमकिन कराई जाती है। किसान अपनी फसल बाजार में बेचता है और यदि MSP से कम मूल्य मिलता है तो सरकार उसे अंतर की रकम जो है वो उसके खाते में डाल देती है। एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि किन किन दस्तावेजों के साथ आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक पासबुक, आपका मोबाइल नंबर, भूमि संबंधित दस्तावेज, खसरा खतौनी, फसल बोने का विवरण, किसान पंजीयन संख्या, समग्र ID, इन सभी कागजातों की आपको जरूरत पड़ेगी। अब सवाल आता है कि PM आशा के अंतर्गत जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, किसान कैसे तय करे कि उसके राज्य या जिले में कौन सी व्यवस्था लागू है और किस योजना का लाभ उसे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसान स्वयं यह तय नहीं कर सकता कि उसे PM आशा योजना की किस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। यह निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फसल उत्पादन और बाजार की परिस्थितियों के आधार पर लेते हैं। यदि हम छतरपुर जिले की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों, मसूर, तुअर, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलें लगाई जाती हैं। जब सरकार किसी फसल के लिए MSP पर खरीद की घोषणा करती है तब जिला प्रशासन, कृषि विभाग, मंडी समिति और सरकारी समितियों के माध्यम से किसानों का पंजीयन कराया जाता है। यदि PSS लागू हो, मान लीजिए चना, मसूर या किसान या सरसों के लिए सरकार ने PSS के तहत खरीदी स्वीकृत की है, तो ऐसी स्थिति में किसान को अपनी उपज निर्धारित खरीद केंद्र पर ले जानी होगी। सरकार या उसकी एजेंसियां उसे सीधे खरीद सकेंगी। यदि कुछ परिस्थितियों के कारण सरकार फसल की सीधी खरीदी नहीं कर सकती तो उस स्थिति में किसान को MSP और बाजार मूल्यों के बीच का अंतर वो प्रदान करती है। उदाहरण के लिए सोयाबीन जैसी फसलों के लिए मध्य प्रदेश के मूल्य अंतर भुगतान व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो मैं छतरपुर के किसानों को यही सलाह दूंगा कि वे केवल अफवाहों या बाजार की चर्चाओं पर निर्भर न करते हुए सही जानकारी के लिए अपने आसपास मौजूद कृषि विभाग के विकासखंड कार्यालयों में संपर्क करें, मंडी समिति की घोषणाएं देखें, सरकारी समिति और खरीद केंद्रों की सूचना प्राप्त करें, ग्राम पंचायत और कृषि विस्तार अधिकारियों से जानकारी लें, पंजीयन अवधि के दौरान अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं एवं एक सरल नियम याद रखें, यदि सरकार खरीद केंद्र खोल रही है तो फसल जमा करनी है और यदि मंडी के लिए बेच रहे हैं तो आपको अंतर राशि मिलेगी।
1: भैया बहनों, अब अपन सबने सुनी वार्ता। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान किसानों के लिए उचित एवं लाभकारी मूल सुरक्षा कवच। वार्ताकार रहते डॉक्टर सिद्धार्थ नामदेव। और भैया, अब कार्यक्रम

0: खांगी बढ़ाए उके पहला थोड़ो सो रोका थे।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
6: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: भैया बहनों देखो, आज है सोमवार। आज के दिन हम सभी भैया बहनन खां रमतुला कार्यक्रम सुनवाऊ थे, तो निश्चित वे बाट हेरे हुई है। तो अपने सभी भैया बहन हर सुने रमतुला कार्यक्रम श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। सुने सभी भैया बहन। रमतुला कार्यक्रम सुनवे वाले सभी भैया बहनन खां अपने भैया पुष्पेंद्र कुमार वर्मा की राम राम। देखो भैया, अपने ही रमतुला कार्यक्रम की वेरा भाई और हम अपन सबको मन पसंदीदा कार्यक्रम रमतुला लेके हाजिर हो गए। ई कार्यक्रम को प्रसारण प्रत्येक सोमवार खां ग्राम सभा में अपन सब जन सुन सकत है। ई के लाने अपन खां जो फोन कॉल्स लगाने हैं वे प्रत्येक सोमवार खां दिन में 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक अपन सब जने फोन लगा सकत है। ई के लाने हमारे जो फोन नंबर है वे है 241588 और दूसरा नंबर है 2980 29। छतरपुर से बाहर के भैया हमारे एसटीडी कोड नंबर लगाबो न भूले। छतरपुर को एसटीडी कोड नंबर है 076782। और भैया देखो, जे बजन लगे अपन सब जन की फोन। तो भैया बहनों, हम अपन सबका सुनवा रहे हैं पर्यावरण के ऊपर जा लोक रचना, जिये गा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक। ई पर्यावरण लोक रचना हाँ सुनबे के लाने आए भैया कछु फोन कॉल्स।
7: शुक्ला ग्राम जिला टीकम बात कर रही हूँ। आज चंद्रभूषण पाठक जी की आवाज में पर्यावरण गीत सुनवा दीजिए। पहले नंबर पर
8: हम बोला जंटपुरा पनवाली जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवी दीदार बात कर रहे सर जी। आज पहले नंबर का सुनवा दीजिए चंद्रभूषण पाठक जी की आवाज में।
9: जी सर, मैं ग्राम बिड़ोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर बोल रहा हूँ। सर जी, आज चंद्रभूषण पाठक जी की आवाज में सुनवा दीजिए लोकगीत।
10: हम पाठक मोहल्ला मोहम्मद से पैसा पाठक बोल रहे सर। सर हमें पहले नंबर को सुनवा दो चंद्रभूषण पाठक की आवाज में।
11: हेलो, ग्राम गोना कृष्णार थाना सोजना तहसील नारायणी जिला माई नाम ने बोल रही चंद्रभूषण पाठक की आवाज में लोकगीत सुनना है।
12: हम ग्राम सुनौनी पोस्ट मंजना जिला टीकमगढ़ से बोल रहे हैं सर, विक्रम आदिवासी। चंद्रभूषण पाठक की आवाज में पर्यावरण लोकगीत सुनवा दीजिए सर।
13: मैं फूलचंद पाल मनकारी से बोल रहा हूँ, चंद्रभूषण पाठक जी की आवाज में लोकगीत सुनना है।
14: सर, मैं जगत सिंह चढ़ार ग्राम पपलिया तहसील विवान जिला राजस्थान से बोल रहा सर, चंद्रभूषण पाठक की आवाज में लोकगीत सुनना सर।
0: ई किला ने कछु ईमेल और चिट्ठियां सुनी आई है। जय चिट्ठी आई है ग्राम दुर्गापुर पोस्ट बड़ेरा तहसील पिछौर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से लिखवे वाले भैया बहन है मानसिंह आदिवासी, मीना आदिवासी, बिटिया बेसनबी, मोहन, मोहिनी, सरस्वती, गोदावरी, भावना, पुष्पा, महक, राहुल कुमार, राजकुमार, सत्येंद्र कुमार, सुनीता और हर विलास आदिवासी। तो भैया बहनो, अपन सब जन सुनो जा पर्यावरण के ऊपर जा लोक रचना, जिये गा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक। सुखी

0: पानी सुधरा खो जमा की हवा पानी सुपीता ने हमें जोया जनता ने।
1: भैया बहनों अभी अपन सबने पर्यावरण के ऊपर जा लोक रचना सुनी जिये गा रहे थे चंद्रभूषण पाठक। और भैया बहनों अब हम अपन सबका सुनवा रहे हैं देवी गीत जिये गा रही हैं मनीषा परिहार। ये देवी गीत का सुनबे के लाने आए भैया कछु फोन कॉल्स।
2: हम वर्मा जी श्री राम रेडियो श्रोता संघ भवारी कला जिला टीगोर से पाठक बोल रहे। आज अपन सुनवा दो दूसरे नंबर पे है मनीषा परिहार की आवाज में सुनना चाहूंगी।
3: मैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला अपने गांव रतवा से बात कर रहे हैं। आज सुनवा दीजिए मनीषा परिहार की आवाज में।
4: राम पनवाड़ी जिला महुआ से सुनीता बात कर रही हूँ सर। दूसरे नंबर के सुना रहे मनीषा परिहार की आवाज में।
5: ग्राम गोना कुसमार जिला ललितपुर से बोले द्रौपदी नाम दे मनीषा परिहार का सुना दे जी।
6: हम ग्राम पोस्ट गोना कुसमार थाना सोना तहसील मैरोनी जिला ललितपुर से आपका अपना नियम छोटा कैलाश नारायण नाम दे बोल रहे हैं जी। सर हमको आज मनीषा परिहार के स्वर में एक देवी गीत है वो सुनना है।
7: ग्राम चिन्नौदी तहसील पिछो जिला सीपरी से आपका नियम छोटा सालक राम विश्वकर्मा बोल रहा हूँ वर्मा जी। आज मनीषा परिहार जी को गाँव लोकगीत सुनवा रही है सर दूसरे नंबर को।
8: सर हम ग्रामा पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से सर जी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे सर जी। सर हमें दूसरे नंबर का लोकगीत सुनवा दो मनीषा परिहार की आवाज में।
1: ई के लाने कछु ईमेल और चिट्ठियां सुनी आई हैं। जो चिट्ठी आई है ग्राम मजगुआ कला पोस्ट अमरौनिया तहसील बिजावर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से लिखने वाले भैया बहन है लखनलाल यादव नेहा यादव अनन्या यादव अनुष्का यादव और अभिमन्यु यादव। तो भैया बहनों अपन सब जन सुनो जो देवी गीत जिये गा रही है मनीषा परिहार। अरे

0: भैया बहनहरो, अबे अपन सबने सुनो देवी गीत, जिए गा रही थी मनीषा परिहार। और भैया बहनहरो, अब हम अपन सबका सुनवा रहे हैं हरदौल गाड़ी, जिए गा रही है रज्जू राजा चौहान। ई हरदौल गाड़ी है सुनबे के लाने आए भैया कछु फोन कॉल्स।
1: ग्राम पनवाड़ी जिला आज हमें सुनवा दीजिएगा रज्जू राजा चौहान जी की आवाज में।
2: मैं सुरनपाल सिंह गुर्जर ग्राम बाबूपुरा तहसील कोंच जिला जालौन से बोल रहा हूँ रज्जू राजा चौहान के आवाज में तीसरे नंबर का।
3: सर मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। हाँ सर, हमको रज्जू राजा चौहान की आवाज में हरदौल गाड़ी सुनवा दीजिएगा।
4: सर हम दीप चंद आदिवासी बोल रहे सर, ग्राम सनौनी पोस्ट मंजना जिला टीकमगढ़ से। सर रज्जू राजा चौहान की आवाज में।
5: गोरियाना से पायल नाम दे बोल रहे, रज्जू राजा चौहान की आवाज में सुनना है।
6: जी मैं ग्रामवा पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में दीपक कुमार नामदेव बोल रहे हैं। सर जी आज हमको तीसरे नंबर पर रज्जू राजा चौहान जी की आवाज में एक हरदौल गाड़ी है वो वाली गाड़ी सुनवा देना।
0: ई के लाने कछु ईमेल और चिट्ठियां सोई आई हैं। जो चिट्ठी आई है ग्रामा पोस्ट तालगांव तहसील भांडे जिला दतिया मध्य प्रदेश से लिखवे वाले भैया बहन है संतोष कुमार नागल, मेहरवान सिंह नागल, प्रताप सिंह नागल, अभिषेक कुमार नागल, शिवम कुमार नागल, लोकन सिंह गुर्जर और उनके परिवार वाले। तो भैया बहनो अपन सब जने सुनो जहरदौल गाड़ी, जिए गा रही है रज्जू राजा चौहान।

0: भैया बहनरो, अबे अपन सबने सुनी हरदौल गारी, जिए गा रही थी रज्जू राजा चौहान। और अंत में भैया बहनरो, हम अपन सबका सुनवा रहे हैं एक लोक भजन, जिए गा रहे हैं जयंत विश्वकर्मा। ई लोक भजन हाँ सुनवे के लाने आए भैया कछु फोन कॉल्स।
1: मैं जंतपुर अपनवाड़ी से दिनेश अग्रवाल बोल रहा हूँ सर। मेरे को सुनना चौथे नंबर का सुनना जयंत विश्वकर्मा की आवाज।
2: भैया योगेश ज्यांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। जयंत विश्वकर्मा जी की आवाज में लोकगीत सुनवा देंगे।
3: पिपलिया से आकाश ठाकुर जी। सर हमें जयंत विश्वकर्मा को लोकगीत सुनने सर।
0: ई के लाना कछु ईमेल और चिट्ठियां सोई आई हैं। जो चिट्ठी आई है ग्राम छिमनी पहाड़ गांव थाना ईसा नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। लिखवे वाले भैया बहन है बालचंद कुशवाहा, हीरा कुशवाहा, गोले कुशवाहा, भगवती कुशवाहा, कुमारी आकृति कुशवाहा और हनुमत कुशवाहा। तो भैया बहन हरो, अपन सब जने सुनो जो लोक भजन, जिए गा रहे हैं जयंत विश्वकर्मा। अरे

भैया बहनहरो, अभी अपन सब ने सुनो लोक भजन जिए गा रहे थे जयंत विश्वकर्मा। और भैया बहनहरो, अब हम अपन सबका बता दें अगले रमतुल्ला कार्यक्रम की झलकियाँ। कार्यक्रम की पहली झलकी है हास्य गाड़ी से, जिए गा रहे हैं बलराम यादव।

0: कार्यक्रम की तीसरी झलक की कछियाई से हैं, जिये गा रहे हैं घनश्याम दास गुप्ता।
1: मिला खारसानी परी काल की पक्कू की बाई, मिला खारसानी परी काल की।
0: कार्यक्रम की अंतिम झलक की लोक शैलीबद्ध लोकगीत से हैं, जिये गा रहे हैं मुन्ना लाल राजपूत।
2: हाँ।

भैया बहनों रो देखो अबे अपन सबने सुनो रमतुला कार्यक्रम जो श्रोताओं के फोन कॉल्स ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हतो प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति की। और भैया अब देखो बारी आउट है आज की सीख की। आज हम बात कर भी ज्यो ज्यो भींजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। भैया बहन रहो जय एक लोक कहावत है ईमे कामरी को मतलब है कम्बल से है। जैसे ही कम्बल गीलो हो जाता है तो वो बहुत ही बजनी और भारी हो जाता है। यानी मतलब जो है अपनी जिंदगानी से कि जब भी कोनो व्यक्ति गलती या पाप करत जात है तो उनके कर्मों को बोझ उतना ही भारी हो जात है। इसे भैया बहनों अपन खां जी सीख मिलत है कि जब इस संसारी में अपन आए हैं अपन ने जन्म लो है तो आंखें देखो अपन खां सबसे पहले तो सबके संगे अच्छो अच्छो करने हैं। कौन भैया बहन के संगे गलत नहीं करने हैं। सबई तो नहीं लेकिन कछु भैया बहन हरे अपने कछु स्वार्थ के पीछे दूसरे भैया बहन को गलत कर बैठे थे तो जब कौन देखो नौनी और उम्दा बात नहीं है कि अपने कछु छोटे से फायदा के लाने सामने वाले को बड़ा नुकसान करवो। तो हमारे सब भैया बहन से जो कहव है जितना हो सके तो एक दूसरे को सहयोग करो आपस में प्रेम भाव बनाओ अपन सबका ये चीजें करने हैं। और भैया देखो अब हो रही चलवे की बेरा तो चलवे के पहला सभी भैया बहनों का कल के कार्यक्रम शुभ बता दिया जाए। कल घरनी कार्यक्रम में सुने लोक मंजरी कार्यक्रम श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम एक भेंट वार्ता सुने कार्बनिक पदार्थ का मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव विषय पर प्रियांशु चौबे से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत और आज की सीख में सुने वृक्षारोपण करें अपनो तपनो बतकाव हुए मनोरंजन हुए। तब तक अपने बिरजू भैया आज्ञा दो पंचो राम राम।

0: अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विदेश नीति।
2: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
4: धन्यवाद।
3: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
4: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
3: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
4: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूं तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो JJ कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मूड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं, बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइन

0: एडवाइस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में चार वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत न हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो। 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहां घरों में जगह नहीं है वहां कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, सब परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो। ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है, तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना यह आबादी हो गई है, और हमें अनुमान यह है कि 2047 तक यह आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी, उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है, तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है, और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है, अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद यूएसए में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता, तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं, तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहां अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहां लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आए।

0: तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये चार पांच बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो तीन शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम वर्ग।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज, मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि तीन गुना ढाई गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा सात कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, एक डेढ़ लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कह न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलबीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत वन अमृत टू योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टीयर टू टीयर थ्री शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1,00,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1,00,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2,00,000 रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी, तो 4,00,000 करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपने अपने स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है, साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि एक साल में

0: अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया कि वो तीसरे बार में अगर दो बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1-2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में जी मीटिंग हुई और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई। हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया हमारे।

0: अधिकारी ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री।

0: जिसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000 भारत सरकार देती है, टॉपअप जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसमें इनकम भी हो जाए,
1: इनकम होने लगे।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाया जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया है, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद मनीष सबरवाल, को फाउंडर ऑफ टीम लीज सर्विसेज। इंटरव्यूअर इज अनिल पद्मनाभन, सीनियर जर्नलिस्ट।
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, we make a great

मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

साहिब बीबी और गुलाम इस फिल्म का गीत सुना आपने आशा भोसले और साथियों की आवाज में। शकील बदायूनी के लिखे गीत को संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। और लीजिए फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत, जिसे लिखा है प्रकाश मेहरा ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी

0: के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: टा कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो

0: सारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
3: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें।

0: और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया। इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-07-1-2371-7107-106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी
0: जी। अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आपको थॉटलेस हो जाइए, सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी
0: जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। जब अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी।
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार जी।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछे क्या सवाल है आपका?
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में

0: बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो किसी हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा?
1: धन्यवाद रवि जी। और आपका जो आप प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर हम बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
2: जी,
1: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
2: बिल्कुल लाभ होगा। और अनिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां?
3: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
2: जी,
3: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सव आसन है। कहने में तो बड़े हंसी की बात आ जाती है
2: सभी के लिए,
3: हाँ, लेकिन जैसे ही हाई बीपी होता है तो आप सव आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सव आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
2: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?
4: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
2: जी,
4: और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है
2: जी, बताएं।
3: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
2: जी,
3: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
2: जी।
3: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
2: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए?
1: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, और रात में ब्रश करके सोना है
2: जी,
1: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
2: वो
1: उसको हम वेस्ट कर देते हैं, तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ, हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है इसके अंदर, घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
2: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
5: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है, तो मैं विशेषज्ञ से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
3: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है, और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में

0: पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
0: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले जी। तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
2: हेलो, नमस्कार, मैं मुकेश
1: जी। नमस्कार,
2: नमस्कार है
1: जी। सवाल पूछिए। शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
0: जी हाँ, बिल्कुल, प्राणायाम है
1: जी।
0: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: मुकेश कुमार जी,
1: जी क्या सवाल है आपका?
3: कुमार जी नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
3: डीजे और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार।
3: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
1: जी,
3: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
1: जी
4: जी,
3: और योगा करने से वो ये होगा
5: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें, पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीजों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है? क्या दोनों को करना आवश्यक है?
0: ये दोनों योग के ही अंग हैं
1: जी,
0: प्राणायाम और आसन
1: जी।
0: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजिड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
1: जी।
0: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
1: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
6: जी धन्यवाद, प्रणाम इकट्ठे सर
1: जी, बताइए
6: सर। जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
0: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला श्वास के लिए बोला है।

0: कि श्वास, सॉरी कुछ
1: जी
0: है ना, तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाए और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
1: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं तो बड़ी थकान सी होती है।
0: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
1: जी,
0: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में, जो कंप्यूटर पर बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए, और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपालभाति अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
1: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, सवाल पूछिए।
2: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
1: प्रधानमंत्री शुभकामनाएं जी। सवाल पूछिए।
2: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
3: धन्यवाद रशीद जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा, और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें, अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आंखों में कुछ भी डालें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले भी बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पे लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
1: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
0: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
1: जी,
0: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और अपना जो है ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
1: जी,
0: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
1: बिल्कुल, करेंगे तो होगा।
0: हाँ।
1: कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
3: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारियां
1: जी।
3: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहां जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
1: जी।
3: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई न दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत तेज करने लग जाते हैं,
1: उनका
3: फायदा नहीं होता, नुकसान होता है
1: जी, जी, जी।
3: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव यह है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
1: जी।
3: और खाना जो खाया है वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे जितना

0: संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
1: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या सवाल है आपका?
2: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
1: बहुत अच्छा सवाल,
3: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेटकर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो भी कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भांति नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है, तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
0: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से धर्मवीर। धर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका?
4: नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
0: धन्यवाद।
4: एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है, इस बारे में आप बताएं। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
3: घर घर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए। जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है, तो मैं वहां बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीजों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती है। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
0: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। और खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है, तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है बॉडी, एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें, ज्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी।
5: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है
1: जी,
5: और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
1: जी
0: रमाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया, ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत बात है, क्योंकि उनको एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको

0: लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई ही नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित, क्या सवाल है आपका?
2: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गए या बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल्स रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोगों ने इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीने करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
3: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
3: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें। जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं, वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं। रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं। और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
0: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है। ब्राह्मणी प्राणायाम के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें। और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
1: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रहे हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत करते हैं आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। हम आपको बता दें, हमारा ईमेल आईडी है airchhatarpur1976@gmail.com। आप हमें इस पर मेल करें, अपनी पसंद का गाना सुने। तो श्रोताओं, प्रस्तुत करते हैं मन भावन कार्यक्रम में कार्यक्रम का ये पहला गीत।

अभी आपने सुना मिस्टर नटवरलाल फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत दिया था राजेश रोशन ने और पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने।

ये मेल हमें मिला है नाभा जिला पटियाला पंजाब से, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और उनके परिवार के लोग। ग्राम पोस्ट गोना कुसमार, थाना सौजना, तहसील मेहरौनी, जिला ललितपुर से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, राम देवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखनलाल नामदेव, चाहना नामदेव, आकाश नामदेव, रानी परी नामदेव, सूरबी पायल और उनके मम्मी पापा। इसी गीत को पसंद किया था किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास और आशा देवी ने। फरमाइश आई थी इस गीत के लिए हमारे पास राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, ओम सेन और कुमारी सपना सेन, धर्मेंद्र सेन, मुकेश, द्वारकी बाई, मनीषा बाई चौधरी, इन्होंने मेल पर इस गीत की फरमाइश भेजी थी। साथ ही हमारे पसंद करने वाले श्रोता थे महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और टिशा गोस्वामी। इसी गीत को पसंद किया था हमारे श्रोता कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने। और लीजिए हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मीरा का मोहन से, आवाज थी मोहम्मद अजीज की। गीत लिखा था इंदीवर ने और संगीत दिया था अरुण पौडवाल ने।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, इस गीत के पहले, इस ब्रेक के पहले जो आपने गीत सुना था वो हमने लिया था फिल्म मीरा का मोहन से और पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी ने। हमें इसी गीत के लिए मेल किया था भट्टीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और आयुषी गुप्ता ने। यही गीत सुनना चाहा था ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडानी ने। इसी गीत को पसंद किया था हमारे श्रोता जिन्होंने मेल पर यह फरमाइश की है, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने।

मेल किया है हमें इसी गीत के लिए अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने। इसी गीत को सुनना चाहा था बाबू यादव, मंशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अन्नू यादव और अरुणेश यादव ने देवकी बिहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी से। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता फरमाइश करती थी इस गीत के लिए डाबकी रोड अकोला से, ग्राम मामना, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया था रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था ग्राम बिटोरा, तहसील जिला बड़ा, तहसील बड़ा, जिला दतिया, लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूर्यांश गुर्जर और उनके परिवार के लोगों ने। मेल किया था इसी गीत के लिए बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने। श्रोताओं हमें मेल भेजते रहें और गीत सुनते रहें। आपके लिए हमारा ईमेल का एड्रेस है, ईमेल आईडी airchhatarpur1976@gmail.com। और हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया। अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: इस ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे सिलसिला फिल्म का गीत, आवाज थी लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था शिवहरी ने। मेल करते रहिए, गीत सुनते रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है airchhatarpur1976@gmail.com। और ये गीत जो आपने सुना सिलसिला फिल्म का, उसे पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल आया है बुलढाणा बटशिंगी महाराष्ट्र से, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से पसंद किया था सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित कुमार ने। इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास और आशा देवी, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता जिन्होंने हमें मेल किया है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से पसंद किया था मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा ने हमें ये मेल भेजा था इस गीत के लिए। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। मेल किया था हमें इस गीत के लिए रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था हमारे श्रोता मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट, जिला बिजनौर से। इसी गीत के लिए हमारे पास ये मेल आया था दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बप्पू डप्पू का। तो श्रोताओं से एक बार फिर हमारा कहना है हमें ईमेल करते रहिए, अपनी पसंद का गीत सुनते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है airchhatarpur

1976@gmail.com। और हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत

0: has made air connectivity possible for smaller towns and cities. DigiYatra has made air travel smoother, simpler and more seamless.
1: Ministry of Civil Aviation, a new flight for a developing India. 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
2: इस ब्रेक से पहले आपने सुना तहलका फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी थी कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता ने. गीत लिखा था संतोष आनंद ने और संगीत दिया था अनु मलिक ने. पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने. ये पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित. इसी गीत को पसंद किया था हिमांशी चंदा, जीवनलाल ग्राम टोरिया पलेरा टीकमगढ़ से. मेल किया था इसी गीत के लिए हमें मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सौरई जिला ललितपुर से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और समस्त नामदेव परिवार ने. गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से पसंद करने वाले थे दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और उनके परिवार के लोग. मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराज भोजने, पीएस नेहावकर और तुषार कानांगले. इसी गीत को पसंद करने वाले थे हमारे श्रोता जिन्होंने हमें मेल किया है. राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी ने. गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने. इसी गीत के लिए हमें मेल भेजा था गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह ने. पसंद किया था इसी गीत को गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा और उनके परिवार के लोगों ने. साथ ही साथ इस गीत के लिए हमें मेल भेजा था नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से. अकरम हुसैन बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबेना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी वर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और कलेर बिहार से पसंद किया था मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन ने. मेल भेजा है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज ने. पसंद किया था हमारे इस गीत को अपने मेल के माध्यम से नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा ने. फरमाइश भेजी थी मेल के माध्यम से इस गीत के लिए हमारे पास कवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने. किशनगंज बिहार से लिखा था रविंद्र मोहन दास और आशा देवी दास ने. नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार मनोज सुधार, हिमांशु सुधार और पवन सुधार ने. तो हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर हमने आपको सुनवाया था तहलका फिल्म का गीत. एक बार फिर हम आपसे कहेंगे, हमारे श्रोताओं से कहेंगे कि मेल करें, अपनी पसंद का गीत सुने. मेल के लिए हमारा ईमेल आईडी है

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे पुलिस पब्लिक का ये गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। शब्द रचना थी असद भोपाली की और संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, इस ब्रेक के पहले हमने आपको सुनवाया था पुलिस पब्लिक फिल्म का गीत। इसे पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। आज श्रोताओं से ये आग्रह जरूर है कि कृपया एक बार में एक ही ईमेल करें। आप बार बार करते हैं तो उससे आपका नाम बार बार हमारे सामने आ जाता है, तो कृपया प्रोग्राम में एक फरमाइश के लिए एक ईमेल करिए। पसंद किया था हमारे श्रोता जो हैं वो निरंतर हमें मेल कर रहे हैं, संतोष नामदेव और उनके परिवार के लोग, ज्योति नामदेव, कैलाश, दीपक, नैना और नामदेव परिवार। इसी गीत को भट्टीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और आयुषी गुप्ता। पसंद करने वाले हमारे श्रोता बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाबा साहेब करवा। इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। पसंद किया था हमारे इस गीत को मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर से ही मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। हमारे इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताईडे, बसंतराव भोजने, पीएस निहावकर और उनके परिवार के लोग। पसंद किया था इस गीत को हमारे श्रोता रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। मेल किया है हमारे इस गीत को सुनने के लिए मोताला महाराष्ट्र से, माफ कीजिए ये मेल हमारे उसमर पूरी तरह प्रदर्शित नहीं हो रहा है, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना ने लतावली जिला मुरादाबाद से। हम फिर अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि एक बार में कृपया एक गीत के लिए हमें एक ही मेल करें, और मेल जरूर करें, अपनी पसंद का गीत सुने। हमारा ईमेल आईडी है airchhatarpur1976@gmail.com। सुनिए अपनी पसंद का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना हीरो फिल्म का गीत, आवाज थी लता मंगेशकर और मनहर उदास की, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: AIR at 90. और इस ब्रेक के पहले जो गीत आपने सुना उसे सुनना चाहा था हमारे श्रोता भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा और उनके परिवार के लोगों ने। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरावाला से अविराज सिंह और उनके परिवार के लोग, इसी गीत को सुनना चाहा था नुमाई से संतोष नामदेव, अभय और अनिल ने। तो हमारे श्रोताओं की फरमाइश के साथ ही मन भावन कार्यक्रम यहां समाप्त होता है। एक बार पुनः आपको बता दें कि मन भावन कार्यक्रम में अपने मेल भेजने के लिए हमारे ईमेल आईडी air.chhatarpur1967@gmail.com पर हमें मेल करें और अपनी पसंद का गाना सुने। मन भावन कार्यक्रम की प्रस्तुति आप सुन रहे थे अपने मित्र संजय खरे के माध्यम से। मन भावन कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सातवीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labour migration to facilitate mobility. Speaking of